ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 5 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक

0: बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का प्रातः वंदन।

ये शब्द संस्कृत के भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजना, और सेवा का दूसरा नाम ही है श्री बजरंगबली का नाम, जिनकी स्तुति अभी आपने सुनी। भक्ति का अर्थ है सेवा करना, भजना। ये आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ने का एक आध्यात्मिक और भावनात्मक मार्ग है। भक्ति केवल पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में से ईश्वर में लीन हो जाना है। सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। इससे हमारा अहंकार मिटता है और मन को शांति मिलती है।

0: आराधना में अभी पुनः उपस्थित होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस

0: एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हम कथा पूजा या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते आए हैं कि अन्य कालखंडों में हमारे ऋषि मुनि राजा न जाने कितने वर्षों की तपस्या करके ईश्वर की भक्ति प्रदान करते थे, उनके दर्शन प्रदान करते थे। लेकिन इस कलिकाल में कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कालखंड में ईश्वर का नाम सुमिरन ही हमें उनके सानिध्य तक लेके जाता है। इस कालखंड में भक्ति करने के 9 तरीके बताए गए हैं, जिन्हें नवधा भक्ति कहा जाता है। भगवान की लीलाओं और कथाओं को सुनना, ईश्वर के गुणों और नामों का गुणगान करना, निरंतर भगवान का ध्यान करना, उन्हें याद करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, श्रद्धा और प्रेम से मूर्ति या प्रतीक की पूजा करना, ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना या प्रार्थना करना, स्वयं को ईश्वर का दास या सेवक मानना, ईश्वर को मित्र के स्वरूप में स्वीकार करना, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना या समर्पित हो जाना। हम इन मार्गों को अपनाकर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, उनका वरद हस्त प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर सिर्फ आस्था, प्रेम, सच्ची भावना के भूखे हैं। किसी ने उन्हें दास बनाकर पूजा, किसी ने सखा बनकर उनकी स्तुति की, तो किसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनकी आराधना की। हम किसी भी रूप में ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, बस आवश्यकता है कि हमारी भावना में, हमारी आस्था में, हमारे विचारों में निष्ठा हो, सच्ची लगन हो।

जीवन में अनेक विपत्तियां हैं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन हमारा मार्ग सही है तो ईश्वर हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। कामनाएं भी ऐसी हों जो किसी का नुकसान न पहुंचाती हों, हमें सन्मार्ग पर ले चलने वाली हमारी कामनाएं हों, वो काम

हमारी अवश्य पूर्ण होती हैं। बस मन में आस्था विश्वास होना चाहिए और हमारे कर्म सही होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी हमेशा हमारे विचार, हमारे कर्मों, हमारी भावना को देखते हैं। उन्हें किसी बहुत बड़े चढ़ावे की, महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। यदि श्रद्धा भाव से हम उनके सामने हाथ जोड़कर भी अपने भाव व्यक्त करते हैं तो वो स्वतः हमारी पीड़ा की अनुभूति करते हैं, और फिर हम उनकी संतान हैं, वो स्वयं हमें दुखी कैसे देख सकते हैं।

अभी आपने MS सुबुलक्ष्मी की आवाज़ में ये भक्ति रचना सुनी। ईश्वर हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ आज की आराधना से अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए गोपाल कृष्ण गोखले के विचार।

मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई स्मारक बनवाया जाए या मेरी प्रतिमा खड़ी की जाए। मेरी कामना केवल यही है कि लोग देश से प्रेम करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दें। ये विचार हैं गोपाल कृष्ण गोखले के, जिसे उन्होंने भारत सेवक समाज के सदस्यों से अंतिम शब्द के रूप में कहे थे। विनम्र राष्ट्र सेवा की प्रतिमूर्ति के रूप में गोखले जी को याद किया जाता है। आज भारत विश्व संदर्भ से अपने को जोड़ने के लिए आतुर है। गोखले जी ने बहुत पहले कहा था, हमारे पास साधन कम हैं, कठिनाइयां बहुत हैं, अतएव हमें उचित है कि जिधर से जो सहायता हमें मिले उसको व्यर्थ न जाने दें। ये स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी ग्रामीण दस्तकारियों में उन्नति की गुंजाइश है, परंतु हमको सारे संसार का सामना करना है, अतएव सामान्यतः हमें मशीन और इंजनों की शक्ति पर ही भरोसा करना पड़ेगा। इस पर लक्ष्य रखते हुए देखिए कि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं। प्रथम, संसार की व्यापारिक अवस्था का ज्ञान हमारे देशवासियों को साधारणतः बहुत कम है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि सारे संसार की अपेक्षा हमारी क्या दशा है और हमारी ऐसी दशा क्यों है। दूसरे, हमारे पास पूंजी बहुत कम है और उसे लगाने में लोग हिचकते हैं। पारस्परिक विश्वास, मिलजुल कर काम करना, साझे का कारोबार इत्यादि

0: बातों का यहाँ अभाव है। और तीसरी बात ये कि उद्योग और शिल्प की शिक्षा की बड़ी कमी है। अंत में यदि हम कुछ नवीन वस्तु बनाने में सफल भी होते हैं तो सारे संसार में प्रतियोगिता करने की आफत हमारे सर पर खड़ी होती है और आरंभ में इन नई चीज़ों का मूल्य कुछ अधिक होना और चीज़ों का कुछ घटिया होना दोनों बातें अनिवार्य हैं। अतएव भारत के बाजारों में उनका प्रचार बहुत कम होता है। अहर्निश राष्ट्र और समाज के उत्थान के प्रति समर्पित गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी मृत्यु से पूर्व डॉक्टरों से कहा था कि मुझे तो कार्य से केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। कर्मरत रहना गोखले जी का स्वभाव बन गया था। लोकहित चिंतन उनका जीवन मंत्र था और उनके परिचालन के लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाकर कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकों की एक मालिका का निर्माण किया था। भारतीय विचार क्रांति के अग्रणी महापुरुष गोखले जी के विचार हमें देश और समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा का अमोघ पाठ पढ़ाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने देशवासियों से कहा था, मैं मातृभूमि के लिए अपनी आकांक्षाओं की सीमा को अनंत और अपरिमेय मानता हूँ। मैं स्वदेशवासियों को अपने देश की उसी वेदी पर देखना चाहता हूँ जिस पर अन्य देशवासी अपनी भूमि में खड़े हैं। मैं जाति पात का कोई भेद नहीं मानता और ये भी चाहता हूँ कि स्वदेशवासी नर नारी अप्रतिरोधित तथा अनियंत्रित रूप से उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि संसार के महान राष्ट्र के बीच भारतवर्ष भी राजनैतिक, औद्योगिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक विषयों में स्पर्धा की वस्तु न रहकर उचित स्थान प्राप्त करें। मैं इन सब बातों की आकांक्षा करता हूँ और साथ ही साथ विश्वास भी करता हूँ कि मेरी सारी लालसाएं वस्तुतः तथा सारतः इसी प्यारी भूमि में चरितार्थ भी होंगी।
1: अभी आप गोपाल कृष्ण गोखले के विचार सुन रहे थे। अब आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर रामपाल से दुर्गेश मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय है गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। लीजिए सुनिए।
1: पशुपालक भैया, अरे देखा गर्मी तेज पड़ती है और आप गोरु बछरुआ रखे हैं, लेकिन ई गर्मी में दूध घटे न, पशुअन ठीक रहें, ओकरे लिए काका इंतजाम करे चाहिए, काका सावधानी बरते चाहिए। आज यही सब जानकारी दे के बदे अपने कार्यक्रम में डॉक्टर रामपाल जी आए बाटे। आप विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर साहब आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे।
2: जी नमस्कार।
1: सबसे पहले पशुपालक भैया अरे ई जाना चाहिए कि जो अपन गोरु बछरुआ हैं उनके रहाय के लिए कैसे इंतजाम हो चाहिए।
2: जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गर्मी हमको भी लगती है वैसे ही पशुओं को लगती है। पशुपालन का सिद्धांत है, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ वही मैं अपने पशुओं के लिए भी सोचूं, जो मैं अपने लिए करता हूँ वो मैं पशुओं के लिए भी करूँ। तो इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पशुशाला जो बनाएं आप, तो पशुशाला में खिड़कियाँ होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, ताकि ताज़ी हवा उसमें आती जाती रहे। और कोशिश ये करेंगे पशुशाला के चारों तरफ पेड़ लगे होने चाहिए, जिससे कि

0: आसपास का वातावरण ठंडा रहे और
1: ठंडा रहे।
0: पशुशाला में ठंडी हवा आए।
1: अच्छा
0: और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि गर्मियों में, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं, तो ये डायरेक्ट पशुओं को ना लगे, इसके लिए हम खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर जूट के बोरों का पर्दा लगाएं और उसको भिगाएं,
1: जैसे वो ठंडा रहा है,
0: जिससे कि वो ठंडा
1: पूरा
0: रहेगा।
1: परिसर जौन रहा है
0: बिल्कुल
1: वो ठंडा रहा है।
0: हाँ। एक काम और हम करें कि पशुओं के घनत्व को कम करें, अर्थात पशु से पशु की उचित दूरी होनी चाहिए, और मोटे तौर पर हम 1.5 से 2 मीटर एक पशु से दूसरे पशु की दूरी रखें।
1: डॉक्टर साहब, ये गर्मी में पानी के बड़ी उपयोगिता बात है, तो पानी कितनी मात्रा में और किस रूप में दे चाहिए?
0: जी, वैसे तो 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रति पशु को, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि पशु के पास पानी हर वक्त उपलब्ध रहना चाहिए।
1: अच्छा
0: हम उसके पास ही नाद बनाएं जिसमें कि पानी स्टोर रहे। हाँ, पानी को हम बदलते जरूर रहें ताकि उसे ताजी और ठंडा पानी मिलता रहे,
1: अच्छा
0: और पशु अपनी इच्छा से पिए, जितना उसे पीना है उससे पिए। उससे क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इसका प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर भी सकारात्मक पड़ता
1: मतलब
0: है,
1: न्यूनतम 15 से 20 लीटर तो पानी
0: ये
1: चाय पे चले,
0: आवश्यकता होती है। जी
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण
0: जी
1: बात है।
0: जी
1: और दूसरा जो
0: और
1: उन बताएं कि उनके इच्छा पे निर्भर
0: इच्छा पर
1: बात है।
0: निर्भर होना चाहिए, होता है। और दूसरा, गर्मियों में अगर ऐसा नहीं है तो गर्मियों में 3 से 4 बार हम उन्हें पानी दिखाएं।
1: डॉक्टर साहब, एक बात आवत है, गर्मी में उपलब्ध नहीं हो पावत, एक तो
0: जी
1: यह हरे चारे की उपयोगिता का बात है, और जिनके पास नहीं उपलब्ध हुआ वो का करें?
0: जी तो हरे चारे की उपयोगिता के बारे में मैं बताऊंगा कि हरे चारे में प्रोटीन बहुत होता है और ये दुधारू पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि सूखे चारे में हम ज़्यादातर गेहूं का भूसा या पुआल का भूसा खिलाते हैं, तो उसमें प्रोटीन होता नहीं, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें हरा चारा और सूखा चारा एक निश्चित अनुपात में, जो कि 3:1 है, अर्थात 3 भाग हरा चारा और 1 भाग सूखा चारा दें। इसके साथ साथ दाना भी हमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
1: अच्छा
0: बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जैसा मैंने आप जानते हैं कि 36 से भी ज़्यादा पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता होती
1: जरूरत
0: है,
1: पड़ता है।
0: जिसके लिए हमें दाना देना बहुत ज़रूरी है, और संतुलित दाना देना बहुत ज़रूरी है,
1: ये बड़ा महत्वपूर्ण
0: बहुत
1: है।
0: महत्वपूर्ण है। और संतुलित दाना बनाने के लिए करना हमें यह है कि 40% जो भी खली उपलब्ध हो किसान भाइयों के पास वो दें, 30% जो भी अनाज उनके पास उपलब्ध हो, और 30% चुनी चोकर दें।
1: यानी 40-30-30 के हिसाब
0: जी बिल्कुल। और इस टोटल का 2% खनिज लवण, अंग्रेजी में हम इसे मिनरल मिक्सचर कहते हैं, बहुत ज़रूरी है देना।
1: तो ई किस रूप में मिला था डॉक्टर साहब?
0: ये वैसे तो मार्केट में आजकल बहुत सारे पशु आहार के नाम से हैं, मैं नाम
1: अच्छा
0: नहीं लूँगा, और हम मैंने बताया कि किसान भाई इस दाने को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं।
1: अच्छा खुद भी तैयार कर
0: बिल्कुल,
1: सकता।
0: जो मैंने बताया है इसे घर पर तैयार कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा साधन और सस्ता भी पड़ता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सबसे बड़ी पशुपालक भैया के पास चुनौती रहता है, ये मौसम में दूध के उत्पादन घट जाता है,
0: जी
1: तो ओके का कारण बा, और
0: जी
1: का बढ़ावा कैसे जाए
0: जी
1: या ओका बरकरार कैसे रखा जाए?
0: अपने भारत में मुख्यतः पशुओं को दुग्ध उत्पादन के लिए ही पालते हैं, तो इस दुग्ध उत्पादन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और दाना दें। पशु को गर्मी में वो तनाव में आ जाता है, तनाव में आने के कारण वो खाना नहीं खाता, उसकी भूख कम हो जाती है, और भूख कम होने से उसका दुग्ध उत्पादन घट जाता है।
1: अच्छा
0: और हम अपने भारत में मुख्यतः पशुओं को दुग्ध उत्पादन के लिए ही पालते हैं, तो इस दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा और दाना दें। और इसके साथ साथ एक काम हम कर सकते हैं, अगर पशु चारा नहीं खा रहा है तो एक देसी उपाय है कि 100 से 150 ग्राम हम नींबू लें, 250 ग्राम हम प्याज लें, प्याज के छिलके उतार लें, उस प्याज को काट करके उसका पेस्ट बना लें, चटनी टाइप बना लें हम,
1: अच्छा
0: और उसमें हम नींबू का रस मिला दें,
1: मिला ले।
0: और इसके साथ साथ 100 ग्राम हम आंवला ले लें, आंवला को भी पीस करके चूर्ण मिला दें उसमें, और 50 ग्राम काला नमक, ये सारा मिला करके हम पशु को सुबह शाम 4 से 5 दिन दें, तो पशु की भूख खुल जाएगी,
1: चारा में मिलाए।

0: के दें या पानी में?
1: इसको आप लड्डू बनाकर भी दे सकते हैं,
0: अच्छा,
1: और चारा में मिलाकर भी दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: करना बस इतना है जैसे भी पशु खाए उसको खिला देना है।
0: अच्छा, वही रूप में
1: बिल्कुल
0: खिला देना है। एक डॉक्टर साहब बात होत रही, अगर ई मौसम में लू लग जाए तब क्या करें?
1: तो सबसे पहले मैंने बताया कि लू लगने से पशु तनाव में आएगा, तो उसका तनाव कम करना है, और इसके लिए हम पशु को नहलाएं।
0: अच्छा,
1: बहुत ज़रूरी है नहलाना, कम से कम 10-15 मिनट उसके शरीर पर हम पानी डालें, और पशु के बाड़ा को ठंडा रखें, पशु को ठंडा व ताज़ा पानी दें।
0: अच्छा।
1: और एक दवा है इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम 80 से 100 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन दें, तो इससे उसको लू में बड़ा आराम मिलेगा।
0: लू लग गया डॉक्टर साहब, कैसे उसके लक्षण समझ में आए?
1: जी, पहली बात उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, और कई बार नाक से खून भी आने लगता है।
0: अच्छा,
1: वो पशु के मुंह से लार भी बहने लगती है, पशु खाना छोड़ देता है, उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखे कितना बढ़िया लक्षण बताएं, लू अगर लगा बा
1: जी
0: तो ये लक्षण से पता चल सकता है
1: बिल्कुल
0: कि लू लग गया बात है। डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया जानकारी दें कि जितना भी गोरु बछरुआ हम पशुपालक भैया रे रखे आए, आवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हरा चारा, और साथे साथे लू से अगर बचाए ले जाई हैं तो दूध ई मौसम में न घटी और न गोरु बछरुआ बीमार हुई हैं।
1: जी
0: डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में आए, इतनी बढ़िया जानकारी दें, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल, किसान भाइयों अभी आप इस विषय पर डॉक्टर रामपाल से दुर्गेश मिश्र की बातचीत सुन रहे थे। अब अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की वार्ता, एसिडिटी का होम्योपैथिक उपचार।
1: एसिडिटी, इसका मुख्य कारण स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ के अलावा ज्यादा धूम्रपान, तंबाकू का प्रयोग के साथ साइट्रस फूड, खट्टे फल, मसालेदार भोजन, मिर्च मसाला एवं तली भुनी खाद्य पदार्थ हैं। कुछ खास एलोपैथिक दवाएं, मोटापा और गर्भावस्था में भी एसिडिटी बनती रहती है। एसिडिटी के मुख्य लक्षण हैं पेट फूलना, जिसे टिम्पेनिक एब्डोमेन कहते हैं, मुंह से खट्टी ढकार आना, नीचे से हवा पास होना, पेट में दर्द, लगातार मीठा मीठा बना रहना। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, अतः इसका उपचार जल्द से जल्द होना चाहिए। होम्योपैथिक दवाएं मुख्य रूप से निम्न दवाएं बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन इन सबका इस्तेमाल किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। कल्केरिया कार्ब, इस दवा का रोगी फैट, फेयर एंड फ्लेवी होता है, मोटा, स्थूल और गोरे रंग का अक्सर होता है। अंडा, चॉकलेट, चारकोल, नमकीन तथा मिठाइयाँ ज्यादा पसंद करता है। उसको अक्सर खट्टी ढेकार, खट्टी उल्टी तथा भूख कम लगती है। हार्ट बर्न के अलावा उसके पेट फूला रहता है। पेट के ऊपरी भाग इपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द बना रहता है। इस दवा का प्रयोग 30 नंबर में 3 से 4 बार करना चाहिए और कम से कम 10 से 15 दिनों तक करना चाहिए। नक्स वोमिका, खट्टा खट्टा मुंह का स्वाद बना रहता है। सुबह सुबह नौसिया, मिचली आती है। खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद पेट में दर्द होता है। मिचली के साथ साथ जोर जोर से ओकाई, यानी जिसको रेचिंग कहते हैं, ऐसा लगता है कि उल्टी होगी लेकिन उल्टी होती नहीं है। यह महसूस होता है कि उल्टी होगी तो वो ठीक हो जाएगा लेकिन होती नहीं है। खाने में फैट उसको ज़्यादा पसंद है। वह व्यक्ति इरिटेबल नेचर का, हाइपर सेंसिटिव और जेलस स्वभाव का होता है। 200 नंबर की दवा कम से कम 2 बार लेनी चाहिए और 4 से 6 रोज तक कम से कम लेनी चाहिए।

0: रोमेनिया, खट्टी खट्टी ढेकार आना, इसे हाइपरक्लोरहाइड्रिया की स्थिति बनी रहना, इसमें पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनता है, पेट में दर्द बना रहता है, यहाँ तक कि दांत खट्टे हो जाते हैं, पेट फूला रहता है, 30 नंबर की दवा प्रयोग करना चाहिए दिन में 4 बार। एसिड सल्फ, हार्ट बर्न के साथ साथ खट्टी ढेकार आना, पेट में जलन बना रहना, एल्कोहल की क्रेविंग बनी रहना, खट्टी उल्टी होना, हिक्कफ यानी हिचकियाँ बहुत आती हैं, 30 नंबर की दवा कम से कम 3 से 4 बार लेना चाहिए। कार्बोवेस, मुंह से बार बार ढेकार आना, पेट में दर्द बना रहना, लेकिन ढेकार आने पे रोगी को उसके पेट के दर्द से आराम नहीं मिलता है, 30 नंबर की दवा का प्रयोग दिन में 3 बार करना चाहिए। लाइकोपोडियम, बदबूदार गैस नीचे से पास हो, भूख ज़्यादा लगे, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही इच्छा समाप्त हो जाए, मीठा खाना पसंद करे वो व्यक्ति, 30 नंबर की दवा का प्रयोग कम से कम 3 बार करना चाहिए। चाइना, पेट फूला रहे, गैस पूरे पेट में भरी रहे, हल्का मीठा दर्द बना रहे, गैस न ऊपर से निकले और न नीचे से निकले, भूख भी बहुत कम लगे, 30 नंबर की दवा का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा डाइस्कोरिया और कैमोमिला भी पेट दर्द की और एसिडिटी की बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।
1: एसिडिटी का होम्योपैथिक उपचार, अभी आप डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

उर्दू कार्यक्रम सुनवाएंगे रूस की तरह सुबह 9:30 बजे। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रामाश्रय झा का शास्त्रीय गायन सुनिएगा सुबह 7:30 पर। दिन में 12:15 पंडित रामशंकर का ख्याल गायन होगा और रात 10:30 उस्ताद बहादुर खां का सरोद वादन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीतों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:50 पर। स्वर होगा जलज श्रीवास्तव का और शाम 7:45 पर मनोज कुमार गुप्ता के स्वर में भजन सुनवाए जाएंगे।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी होगा दिन में 10:05 पर। कलाकार होंगे अनुराधा श्रीवास्तव, संतोष कुमार यादव और साथी। कुछ और लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30। स्वर होंगे पुरुषोत्तम, फूलचंद्र शर्मा, संगीता राय और साथियों के। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 10:30। अपनी फोन कॉल्स पर आधारित फरमाशी फिल्मी नगमों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। महिलाएं अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत विमला अग्रवाल की वार्ता होगी, क्या घर का काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी है। साथ ही शशि जैन के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। धरती के गीत सुनिएगा 5:00। स्वर होंगे विभव शंकर और साथियों।

के युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 युवजन सुनेंगे कैरियर की बातें। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम पंचायत घर सुनेंगे शाम 6:30। इसके अंतर्गत इंदु शेखर त्रिपाठी से रामायण पाठ और अरविंद कुमार सिंह के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे।

संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय भावना। प्रोफेसर देवदत्त सरोरे की ये वार्ता सुनवाई गई आज के संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस होगा रात 8:30 और गजलों की महफिल सजेगी कार्यक्रम कहकशां के साथ रात 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: दिवंगतस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रायोजना, प्रधानमन्त्री जनधनयोजना, प्रधानमन्त्री जीवनज्योति बीमायोजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

भगवान शिव ने जगत जननी पार्वती को इस प्रकार वो कथा सुनाई जो काक भुशुंडी ने गरुड़ का मोह भंग करने के लिए सुनाई थी। प्रभु के चरित्र की संख्या अपरिमित है, अपार, जिनका वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती। भवानी कृतकृत्य हुई, उनके मन का संशय मिट गया, श्री राम के प्रताप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया।

अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर थे ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल के, संगीत सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मों से भजन।

अभी आपने पायल देव की रचना सुनी। आवाज जुबिन नौटियाल की थी और ये भजन हमने लिया था मेरे घर राम आए हैं एल्बम से। अगला भजन है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाज मन्ना डे और लता मंगेशकर की है, रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस भजन के साथ ही अब आज का फिल्मों से भजन का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित से उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।

0: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है, हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा

0: कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश

0: सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी 2 पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामाश्रय झा का राग बसंत मुखारी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित पंकज कुमार श्रीवास्तव। हारमोनियम पर हैं श्री महेश्वर दयाल और तानपुरे पर हैं श्री राम शंकर।

0: अभी आप पंडित रामाश्रय जय का राग वसंत मुखारी में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, हारमोनियम पर थे श्री महेश्वर दयाल और तानपुरे पर श्री राम शंकर। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का

0: आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए

0: इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1 लाख के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। The headlines. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
4: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments tracking and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Doki in Meghalaya and Srimathpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivam Mishra, Akashvani News, Delhi.
3: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under India's BRICS presidency this year. Details from our correspondent.
5: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia, and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade, and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women, and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place.

0: to launch land port management system in New Delhi today. Five-day BRICS agriculture ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merrivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की पांच रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़री वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़री इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़री तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वज़ीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ज़री इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज़ भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही

0: की इजाजत होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से यह इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज्यादा काबिल रसाई, किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी और कार्ड से क्या था? मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मियारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस, निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमई का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाक़े के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर

0: दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेस ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीज़ा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बॉस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलावामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए एशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मुकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेरे कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है जिसमें वजीर आजम ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियां देखी हैं जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वजीर आजम ने DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का खास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलाक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد

0: बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं नमस्कार, नमस्कार प्रयागराज। मैं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र। आज हमारा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण आहार विहार, कार्य व्यवहार कैसे संचालित है, हम जाने अनजाने कितने ही देशी विदेशी संसाधनों, सामग्रियों, संस्थाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, इस पर कभी हमारा ध्यान शायद ही जा पाता है। एक दौर था जब हमारे जीवन का 75-80% संचालन स्वदेशी या पारंपरिक तरीके का था, पर अब इसमें काफी हद तक मिलावट है। हर सुबह जिस टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं, शायद ही हमारा ध्यान जाता है कि उसका उत्पादन किस देश का है, ये हम तक कैसे पहुंचता है, या फिर हम दिन भर जो भी खाते पीते हैं उसकी गुणवत्ता या शुद्धता कितनी है, कैसी है। इन्हीं सब विषयों पर जागरूकता के लिए आज 9 जून को संपूर्ण विश्व मना रहा है विश्व प्रत्यायन दिवस। इसकी शुरुआत ILAC और IAF जैसे संगठनों ने मिलकर की थी। पहली बार सन 2008 में 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में प्रत्यायन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना। प्रत्यायन को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी लैब, अस्पताल, सर्टिफिकेशन एजेंसी या निरीक्षण संस्था की जांच करके ये प्रमाण देना कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। जैसे कि इन स्कूलों को किसी न किसी बोर्ड से मान्यता लेनी होती है, वैसे ही टेस्टिंग लैब को NAVL से प्रत्यायन मिलता है। शुद्धता, सटीकता, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता के लिए प्रत्यायन बहुत आवश्यक है। जो सामान हम खरीदते हैं उसकी टेस्टिंग सही लैब में हुई है या नहीं, एक देश में जांचा परखा सामान दूसरे देश में बिना दोबारा टेस्ट के, टेस्टेड वंस एक्सेप्टेड एवरीवेयर की धारणा के साथ बिक सके।

खाने पीने की सामग्री, दवाइयाँ, बिजली के उपकरण आदि सुरक्षित हैं या नहीं, ये सब प्रत्यायन के विषय हैं। इसीलिए प्रत्यायन बहुत आवश्यक है। और आज 9 जून को पूरी दुनिया विश्व प्रत्यायन दिवस मनाती है। अपने देश भारत में NAVL और NABCB जैसी संस्थाएं इस कार्य को संपादित करती हैं, और ये दोनों संस्थाएं QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस 2026 की थीम है नवाचार, विश्वास और सततता, प्रत्यायन की शक्ति। हम वर्तमान युग में जी रहे हैं, ये डिजिटलाइजेशन का युग है, ऑटोमेशन का युग है। ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए प्रत्यायन एक ढांचा देता है, ताकि तेजी से बदलती दुनिया में क्वालिटी बनी रहे। डिजिटल युग में विश्वसनीयता बहुत नाजुक चीज है। प्रत्यायन ये भरोसा देता है कि कोई लैब, टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा है या नहीं। तो आइए हम भी जागरूक हों और विश्व प्रत्यायन दिवस के उद्देश्यों और मानकों को अपने जीवन में उतारें। और अब कार्यक्रम में ले लेते हैं अपने सुधी श्रोताओं के सुविचार। नीरा त्रिपाठी जी लिखते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसमें शंका मत करो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। जी हाँ, हमेशा से कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और व्यापक अर्थों में जय पराजय के विस्तृत मायने हैं। आवश्यक नहीं कि हम किसी को लड़कर ही पराजित करें। बात तो तब है जब सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि वो गलत है और उसमें सुधार आ जाए, तभी हमारी सच्ची जय होती है। और इसके लिए आवश्यक है नियत का शुद्ध होना, क्योंकि जब नियत शुद्ध होगी तभी परमात्मा हमारे साथ होंगे, और जब परमात्मा हमारे साथ होंगे तो सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता है। दूसरा संदेश है, नजर झुके तो अदब कहलाता है और जुबा संभले तो तहजीब। जिसने दो बातें सीख ली उसने दिल जीतने का हुनर सीख लिया। जी हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो हर इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, वो सम्मान चाहता है। हर किसी को मीठे बोल पसंद हैं, और सम्मान दो तरीके से होता है। एक तो होता है बनावटी, जो हम भय दिखाकर, किसी को डराकर या उसकी जरूरतों को अपनी मुट्ठी में समेटकर उससे सम्मान लेते हैं। या फिर दूसरा सम्मान वो होता है जो हमारी मीठी बोली से, हमारे सहयोग से, हमारे खुद के दूसरों को सम्मान देने की प्रवृत्ति से, या फिर हमारे सद्व्यवहार, हमारे आचार व्यवहार से हमें मिलता है। और यही सम्मान टिकाऊ होता है, स्थायी होता है। सम्मान पाने के लिए आवश्यक है क्योंकि पहले हम खुद सम्मान देना सीखें। रामचंद्र माखीजा जी आकाशवाणी परिवार को नमस्कार भेज रहे हैं। वंदे मातरम आपने लिखा है, आपको भी वंदे मातरम, और आपका नमस्कार हम तक पहुंचा और हमारा भी नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। उत्तम सिंह जी ने लिखा है, नमस्कार, जय जोहार जी। जी नमस्कार, आपको भी जय जोहार। और आपने एक गाने की फरमाइश की है। उत्तम सिंह जी, हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फरमाइशी गानों का नहीं है। अगर आप फरमाइशी गाने सुनना चाहते हैं तो हेलो फरमाइश में आप फ़ोन करके बातचीत अपनी रिकॉर्ड करा के अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं, या फिर आपकी पसंद के लिए आप अपना ईमेल भेज सकते हैं, अपना ख़त भेज सकते हैं, अपने संदेशों के माध्यम से आप फरमाइशी गाने सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम है दिन की अच्छी

शुरुआत के लिए, अच्छे सुविचारों के लिए, अच्छी भावनाओं से दिन की शुरुआत के लिए और कुछ प्रेरणा लेने के लिए। फिलहाल आपने आज फरमाइश कर ही दी है, तो आपकी फरमाइश पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। हम आपकी पसंद का ये गाना फिल्म श्री 420 से है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए सुनिए।

तो श्रोताओं, आप भी मनाइए विश्व प्रत्यायन दिवस को, इसकी आवश्यकता के बारे में समझिए और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए। दूसरा, हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज आपको कैसा लगा, अपने संदेशों के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और इस कार्यक्रम में आप और क्या सुधार चाहते हैं वो भी बताइएगा। अपने सुविचार हमें लगातार भेजते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हो चला है। इस कार्यक्रम में मैं आज था आपके साथ, आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र कुमार सिंह, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुंदरम तिवारी ने। अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अस्तित्व से ये गाना। आवाज, गीत और संगीत सुखविंदर सिंह का है।

0: लीजिए सुनिए स्वानंद किरकिरे के बोल राम संपत के संगीत निर्देशन में, आवाज श्रेया घोषाल की है और फिल्म का नाम लापता लेडीज। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह,
4: फंसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
7: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: हम आकाशवाणी

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
3: मैं उपभोक्ताओं से ही आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
2: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहां जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की बुआई की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और एक महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना कर

0: हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिष्टीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम में दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रुपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येन सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें 1 माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण

0: किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में ये देशगान।

अभी आप संवेद सुरों में ये देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ के

0: बताने को लोग बहुत शौक से सुनते हैं कि इस प्रोग्राम में इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत अफसाना जिसका उन्वान है यतीमों का संगम और अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद यामीन बरकाती। तो आइए समाप्त करते हैं उनका ये अफसाना।
1: बाबूजी हम इतने रुपए नहीं लेंगे, साहिल मना नहीं करता, हम नहीं लेंगे, आखिर क्यों? बाबूजी भीख में एक या दो रुपया देते हैं, बहुत सखी हुआ तो 10-5 रुपए देते हैं, 100 रुपए कोई नहीं देता। जब हम 100 रुपए लेकर घर जाएंगे तो अम्मी जान समझेंगी कि हमने चोरी की है, इसलिए वो हमें मारेंगी। देखिए हम 2 घंटे से मांग रहे हैं, मुश्किल से 20-25 रुपए होंगे, इसमें 1 रुपया 2 रुपए के ही सिक्के हैं, 5 या 10 रुपए का एक भी सिक्का या नोट नहीं है। अगर आपको ये रुपये देने ही हैं तो मेरे साथ घर चलिए और अम्मी के सामने दीजिए, तो हम अम्मी की पिटाई से बच जाएंगे। बेटा तुम इतने समझदार हो, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होती हो, फिर भी क्यों मांग रही हो? बाबूजी हम सच कहते हैं, हमारे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं और हम भिखारी भी नहीं हैं, मगर हम बहुत मजबूर और परेशान हैं। सुनिए है, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। दादा दादी ने हमें और हमारी अम्मी को घर से खाली हाथ धक्के देकर निकाल दिया। हमारी अम्मी माँ बाप की इकलौती थी, नाना नानी का भी इंतकाल हो गया था। अम्मी बताती हैं कि ख़ानदान वालों ने नाना नानी के मरने पर घर पर कब्ज़ा कर लिया और हमारे पास अब रहने की कोई जगह ना थी। अम्मी और हम सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे कि अल्लाह ने मदद की, अब्बू के एक दोस्त उधर से गुजरे, उनकी निगाह हम पर पड़ी, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो और फिर क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हमें अपने साथ घर ले गए, 1-2 दिन रखा, उन्होंने किराए पर ये घर ले दिया। अम्मी जान ने अपने कानों के कुंडल और पैरों के पाजेब उतार कर दी और कहा इस सब को बेचकर 1 महीने का किराया दे देना, गैस का छोटा सिलेंडर और ज़रूरी सामान जैसे लोटा बाल्टी वगैरह है ये खरीद कर और कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने सारा सामान खरीद दिया और कुछ पैसे जो बचे थे वो अम्मी को दे दिए। 1 महीना कट गया, सामान भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म। 2 दिन हम दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अम्मी से कहा हम सड़क पर जाकर कुछ मांग लाएं, अम्मी ने मना कर दिया। दोपहर में अम्मी की जब आँख लग गई तो हम चुपके से बाहर निकल आए, पास में मस्जिद थी, जोहर की नमाज हो रही थी, हम मस्जिद के दरवाज़े पर बैठ गए। हमसे मांगना तो आता नहीं था, नमाजियों के आगे हाथ फैला दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। पहले दिन की भीख में हमें 40 रुपए मिले, खाना खरीद कर घर ले आए। अम्मी जान दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, हमें देखते ही बरस पड़ी। हम उनको लेकर अंदर आए, उन्हें सब कुछ बता दिया और किसी न किसी तरह उनको खाना खिला दिया। इस तरह हमने भीख मांगनी शुरू की। आप घर चलिए बेटा, आज हमें काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशात मरियम है। आप घर चलिए वरना अपना नोट ले लीजिए।

अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अम्मी की पिटाई से डर रही हो तो हम इसके बदले छोटे नोट दे देंगे। मुझे घर का पता बता दो, मैं कल खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। पता तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं कल को इसी टाइम इसी जगह मिल जाऊंगी। खुदा हाफिज़ कहकर निशात घर पहुंची। दिल में खुश हो रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही पहुंचने पर उसकी सारी खुशियां काफूर हो गईं। अम्मी ने डांट लगाई और तमाचे लगाए, बताइए पैसे किसने दिए? ये निशात ने सब कुछ बता दिया। बेटा, हर ऐर गैरा को अपनी परेशानी या दुख नहीं बताते हैं, इस तरह हमारी रही सही इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। अम्मी, मुझे और मार लीजिए, पर बाबूजी को कुछ ना कहिए। अब्बू के बाद आज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं बड़ी होती तो उनको भाई बना लेती, पर मैं बच्ची हूँ तो मैं उन्हें अपना। खामोश, अम्मी की डांट ने उसकी बात को काट दिया। कान खोल कर सुन ले निशात, बेटा अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर आओ। इस आवाज़ ने अम्मी की बात को काट दिया। अम्मी ने उसे इजाज़त दे दी। निशात बाहर आई, दोनों लोग सार सुर्ख हो रहे थे, आंखों से गंगा जमुना की धारें बह रही थीं। निशात को इस हाल में देखकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। तुमसे रुख्सत होकर मैं जब चला तो मुझसे नहीं चला गया। हमें एहसास हो गया कि शायद तुम्हारी बात सच हो, मगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सब कुछ हो गया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, कहती हैं मैं अपनी निशात को बहुत पढ़ाऊँगी, कामयाब डॉक्टर या बड़ा अफसर बनाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़े। अल्लाह तुम्हारी अम्मी के ख्वाब को पूरा करे, आमीन। आप अंदर आ जाइए। शुक्रिया। निशात सलीम को लेकर अंदर आई। एक बहुत सी चटाई के अलावा घर में कुछ नहीं था। एक तरफ निशात की अम्मी का हुस्न, शाइस्तगी, सलीका और अंदाज़ गुफ्तगू, मालूम होता था हुस्न का शाहकार लखनवी तहजीब की गंगा में नहाया हुआ और गुर्बत में यहाँ नमदार हुआ है। इसने साबित कर दिया कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। आप हमें माफ़ कर दें, आपने कौन सी खता की है? हमने गुस्से में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। आपने माँ का फ़र्ज अदा किया है, हमें यकीन हो गया कि आपकी तरबियत में रहकर निशात यकीनन आपके सपने को पूरा करेगी, मगर क्या, इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अक्द सानी करना पड़ेगा। मैं एक डायन हूँ, डायन से कौन अक्द करेगा? मैंने अपने सुहाग को निगल लिया, उसकी सजा में भीख के टुकड़े खा रही हूँ। इस जिल्लत की ज़िंदगी को मैं उसी वक्त ख़त्म कर देती मगर जब मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, मगर मैं निशात का ख्याल करके खामोश रही। निशात के लिए मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं डायन हूँ, लोगों ने अपने घरों के दरवाज़े भी मेरे लिए बंद कर लिए हैं। मैं कई घरों में बर्तन मांजने के लिए गई मगर उन्होंने साफ कह दिया हमारे घर न आना। सर्विस के लिए अपनी असमत और अफवत को रिश्वत की बलिवेदी पर चढ़ाना मैंने पसंद ना किया, इसलिए सर्विस को भी ठोकर मार दी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गम की ये सारी सिया रात ख़त्म हो जाए और खुशियों की सुबह यकीन नमूदार होगी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के अख्तियार में है। हमारे दुनिया में आने से पहले ही उसने हमारी मौत का वक्त और जगह और मौत किस तरह होगी सब कुछ लिख दिया है। इसे कोई ना काट सकता है ना बदल सकता है। फिर आप डायन कैसे हो गई? आप सब्र करें और निकाह के बारे में संजीदगी से सोचें, अपनी नशात के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें। निकाह अपने आप नहीं होता, फिर एक बेवा का निकाह मेरा अपना कोई भी नहीं है जो भाग दौड़ करे। मैं खुद किसी के घर में तो नहीं घुस सकती। अगर किसी ने अपने किसी फ़ायदे की खातिर मुझ जैसी अभागन से निकाह कर भी लिया तो इसकी क्या ज़मानत कि वो निशात को अपना लेगा, इसे बेटी जैसा प्यार दे सकेगा? अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी निशात वक्त से पहले ही मर जाएगी और मैं कदम कदम पर मरूंगी। इससे बेहतर यह है कि मैं ऐसे ही ठीक हूं। अगर हो सके तो छोटी मोटी नौकरी दिला दें, नौकरी के चक्कर में ना पड़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें और निकट कर डालिए। आप ही निशात को अपना लीजिए, मुझसे निकाह कर लीजिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आवारा हूँ या चीटर हूँ, जुआरी या शराबी हूँ, चोर या कातिल हूँ, फिर भी आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जो शख्स एक यतीम बच्ची को उसकी माँ की मार से बचाने के लिए उसके घर तक पहुँच जाए, उस यतीम बच्ची की आँख में आंसू देकर तड़प उठे, वो कभी बदकिरदार नहीं हो सकता। आपको पता नहीं कि निशात तो ये फैसला पहले ही कर चुकी थी। उसने कहा था कि अगर मैं बड़ी होती तो मैं बाबूजी को भाई बना लेती, मैं छोटी हूँ इसलिए बाबूजी को मैं अपना अब्बू बनाऊँगी। अक्त का फैसला मेरा नहीं है, निशात का है। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हुस्न जमाल का पैकर, इशार खलूस की देवी, ममता

0: का मुजस्मा, उसके अलावा दुनिया की ठोकरों और दिल जिगर को पाश पाश करने वाले तानों को सहन करने वाली, भूख और प्यास में अपनी असमत और आपत को बचाने वाली एक मजबूत चट्टान हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी। नेज उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजत कुबरा की सुन्नत पर अमल करने वाली एक मोमिना से हमें अक्त करने की सआदत हासिल होगी। हम अपने इशाद के मरहून मिन्नत हैं कि उसने हमें यह अजीम तोहफ़ा दिया। आज से 10 दिन बाद हमारा अक्त होगा। आप हमारे साथ चलें, अपनी पसंद के कपड़े और जेवरात ले लें। हम फिर दूसरे इंतजाम में लग जाएंगे। हमें सारा इंतज़ाम खुद ही करना है। मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी दुर्र यतीम हूँ और ये यतीमों का संगम है। अल्लाह परवान चढ़ाए, आमीन। चलिए आप खुद ही खरीद लीजिएगा, नहीं आप चलें। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। मुँह हाथ धोकर तीनों बाजार के लिए रवाना हो गए।
1: यतीमों का संगम, अभी आप समाअत फरमा रहे थे ये अफसाना, जिसके अफसाना निगार थे मोहम्मद यामीन बरकाती। इस अफसाने के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं अदब की एक और खास सिंफ यानी शेर व शायरी की जानिब, जिसके बगैर आप भी समझते हैं कि प्रोग्राम अधूरा सा रहता है। तो ताखैर ना करते हुए आइए आपको लिए चलते हैं इस हसीन महफिल में। सिलसिला कलामी शायर के तहत आपको सुनवाते हैं आज जनाब अब्दुल नईम खान से उनका ताज़ा कलाम।
2: कुत्ता पेशी खिदमत है।

0: कलामी शायर के तहत अभी आप समाअत फरमा रहे थे अब्दुल नईम खां से उनका कलाम। सामिन, इसी के साथ अब आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर।

0: यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं जलज श्रीवास्तव। इनके स्वर में लीजिए, सुनिए कबीरदास जी की ये भक्ति रचना।

इस गीत के साथ ही अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे आज के कलाकार थे जलज श्रीवास्तव। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए अनुराधा श्रीवास्तव के स्वर में ये गंगा गीत।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आपने अनुराधा श्रीवास्तव के स्वर में ये सोहर सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं संतोष कुमार यादव और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

लाचारी सुनी। इसी के साथ आज का लोकमाधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा
1: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
1: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
1: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता

0: विविधता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहां तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्रवाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय,
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो।

0: चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।

0: माँ माँ देखो हर गोविंद काका आए हैं।
1: पाए लागू माँ जी।
2: जीते रहो हर गोविंद बेटा, क्या समाचार है?
1: जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
2: मेरी बेटी का कोई संवाद?
1: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हा? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
2: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
1: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
2: सो तो है।
1: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
2: अरे हर गोविंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली। बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
2: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
2: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
3: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला। ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
2: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
2: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
1: अच्छा, राम राम
4: राम राम
1: राम राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया।

0: उतरलो।
1: जाना है जलालगढ़, टिकट कटिहार तक कही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर।
0: अरे
1: बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ,
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place.

हीना, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे हैं इस टाइम। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ है, रविंद्र जैन ने गीत और संगीत दिया है। सुरेश वाडकर एक भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं, वे मुख्यतः हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए गाने गाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई भोजपुरी और कोंकण भाषा में, उड़िया भाषा में भी गीत गाए हैं। आइए सुनते हैं इनका अगला प्यारा सा नगमा।

अलावा वे शास्त्रीय संगीत में भी रुचि रखते थे। वर्ष 2019 में उन्हें प्लेबैक सिंगर की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी प्रमुख फिल्में हैं 1982 में प्रेम रोग, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1991 में हिना, 1987 में ईमानदार, 1989 में चांदनी, 1989 में परिनला, 1996 में मशीन, 1981 में प्यासा सावन, 1988 में बोल राधा बोल। आइए सुनते हैं इनका एक प्यारा सा नगमा। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, आवाज़ है सुरेश वाडेकर की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के हमारे कलाकार थे फेमस प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडेकर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा है फिल्म खलनायक से। आवाज़ है अलका याग्निक की, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने तर्ज बनाई है।

पापा कहते हैं। लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने गीत लिखा है, राजेश रोशन ने तर्ज बनाई है।

राजा, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर ने गीत लिखा है, नदीम श्रवण ने तर्ज बनाई है।

लीजिए अब सुनिए हम आपके हैं कौन फिल्म से गीत। एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, देव कोहली ने गीत लिखा है, राम लक्ष्मण ने तर्ज बनाई है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व

0: को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home

शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। इसके अंतर्गत सुनिए अरविंद कुमार सिंह का गाए लोकगीत और साथ ही सुनिए इंदु शेखर त्रिपाठी का रामायण पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिए। इसमें कलाकार होंगे मनोज कुमार गुप्ता, इन्हीं के गाए भजन व गीत होंगे। 8:00 चित्रपट संगीत कार्यक्रम का लुफ्त उठाइए। 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा।

रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए कहकशा। रात 10 बजे खेल दर्पण कार्यक्रम होगा जो कि हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बहादुर खां का सरोद वादन।

ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विवरण। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। सबसे पहली सूचना है सच्चिदानंद शुक्ल के अनुसार विपुल शुक्ल, जिनकी आयु 62 वर्ष है, ऊंचाई 5 फीट 6 फीट है, शरीर सामान्य है, चेहरा गोल है, रंग गोरा है, कोई विशिष्ट पहचान नहीं है, बाल सफ़ेद हैं, इन्होंने सफ़ेद रंग की धोती कुर्ता पहन रखा है। ये 23 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दें। मन्ना का पूर्वा पूरे केवल, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। मोबाइल नंबर है 7011313301। सूचना समाप्त हुई। लीजिए एक और सूचना सुनिए। धर्मेंद्र के सूचना के अनुसार सरोज, आयु 25 वर्ष है, शरीर सामान्य, चेहरा गोल है, आंखें सामान्य है, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, रंगे हुआ है, इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। ये 8 फरवरी 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर दे। निवास ग्राम छुटकी इब्राहिम कूढ़ा, थाना हथीगवा, जनपद प्रतापगढ़। और मोबाइल नंबर है 9792838152। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

लीजिए, आप सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रामशंकर का ख्याल गायन राग है शुद्ध सारंग।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रामशंकर का ख्याल गायन। राग था शुद्ध सारंग, तबला पे संगत की थी अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते
0: जी।
1: मैं रोशनी
0: मांगा जी। जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम फिल्म का नाम है दूल्हे राजा और गाने के बोल लड़की का मार गई
0: है। अच्छा अच्छा, तो भाई आपने गोविंदा और रवीना टंडन की फिल्म का ये गाना पसंद किया रोशनी जी?
1: जी
0: तो चलिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट अड्डिया, तहसील अड्डिया, थाना अड्डिया, गांव मुगराव, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद यादव जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है सूरज
0: जी,
1: और गाने के बोल है

0: प्रेमचंद जी आप गाते बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल मैम,
0: बहुत
1: बचपन से
0: बढ़िया
1: ही गाना
0: गाते।
1: गाने का शौक है हमें।
0: नहीं नहीं अच्छा गाते हैं आप, तो चलिए आपको सूरज फिल्म का ये गाना भी सुनवा देते हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आदरणीय मधु दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कभी कभी
0: जी,
1: और किशोर कुमार लता जी ने गीत को गाया है
0: जी। कौन सा गीत है?
1: तेरा शीशे जैसा अंग, तेरा फूलों जैसा रंग,
0: हाँ
1: मधुरा
0: हाँ
1: के
0: हाँ
1: आतंक।
0: हाँ ऋषि कपूर और नीतू सिंह के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है
1: बिल्कुल
0: जी। तो आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवाते हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फरमाइश, कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: सोनू जायसवाल साहिब प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। सोनू जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: नो एंट्री का।
0: नो एंट्री का टाइटल सॉन्ग सोनू जी ने सुनना चाहा है। तो सोनू जी, नाम लेना है आपको अपने दोस्तों का?
1: सचिन जायसवाल, सार्थक जायसवाल
0: जी,
1: सुशीला जायसवाल।
0: चलिए तो आपको सुनवाते हैं नो एंट्री फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैम मैं प्रयागराज से काजल बोल रही हूँ, गांव अफदालपुर।
0: जी जी काजल जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं मुझे मन मूवी का गाना सुनना है, टाइटल सॉन्ग।
0: कौन सा?
1: मन मन
0: मन का, उसका गाने के बोल बताएंगी? मेरा मन
1: मेरा
0: शायद।
1: मन
0: हाँ हाँ
1: जी
0: हाँ यही टाइटल सॉन्ग है, तो आपको जरूर सुनवाएंगे। काजल अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं मेरा ग्रेजुएशन हो गया है अबकी बार।
0: हाँ
1: मैं मेरा फर्स्ट ईयर है
0: अच्छा
1: जी। घर पर भी पढ़ाई करती हूँ और

0: सिलाई भी करती हूँ,
1: अच्छा अच्छा
0: दूसरे का भी सिलती हूँ।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को इतना व्यस्त रखती हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती हैं। तो काजल, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मन फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दें।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर। कैसे हैं मैम आप?
0: मैं ठीक हूँ। दादनपुर प्रयागराज से हैं विकास जी। तो विकास जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: परवाना फिल्म का गाना है, मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने गाया है।
0: हाँ हाँ
1: इजाजत हो तो बता दूं।
0: हाँ, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है।
1: जी जी ये बहुत ही अच्छा गाना है।
0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना, जो विकास जी की पसंद का है, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं।

0: निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of Nation First, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at

0: The United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said that Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi.
1: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
0: New Delhi condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan. The Enforcement Directorate is conducting search operations at six premises across Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. The case is linked to Aam Aadmi Party leader and Punjab Minister Sanjeev Arora. According to the probe agency, it uncovered a large-scale money laundering operation allegedly carried out through entities linked to Mr. Arora. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to freedom fighter Bhagwan Birsa Munda on his martyrdom day. In a social media post, Mr. Modi said Birsa Munda fought against foreign rule with indomitable courage to protect water, forests and land. Mr. Modi said the saga of his supreme sacrifice for the motherland will continue to inspire a spirit of patriotism in every generation of the country. In the Philippines, the death toll has climbed to 37 after the 7.8 magnitude offshore earthquake that hit the southern part yesterday. More than 500 people were injured while four people were missing. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has said agencies were coordinating the disaster response. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 215 points to 73,739, while the Nifty added 80 points to 23,203 when reports last came in. In men's cricket, India A were 210 for 3 in 42.4 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at Sri Lanka when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
3: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
2: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा, सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी, प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियसना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमात मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान

0: दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी ज़िला में बनाए गए इम्तिहान मराकज़ पर CCTV की निगरानी में ये इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ह रहे कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के लिए 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की थी। इम्तिहान के लिए पूरी रियासत में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क़यादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमत के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरेआमवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी NTA ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले NEET UG दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फेहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासिर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट।

0: गंगा, अरे ओ गंगा, अरे बहनी हम कहा राम राम।
1: राम राम सत्या बहनी, और पनघट सुने बैठी सब बहनी हरण के, गंगा
0: राम
1: और
0: सत्या के
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। गंगा
1: हाँ बहनी।
0: ई बतावा, हम देखा तो का कलिया बाजार गई रहू और साग
1: हाँ
0: सब्जी से झोला तो तुहार भरा रहा। मुना हम देखा तू जोन बट्टे मिट्टी के बर्तन वाले दुकान पे भी गई रहू, गुल्लक खरीदत रहू।
1: देखा गुल्लक खरीदत रहे, यही समय हमरे घरे में आया हन गदेलन खूब नैयाउरे।
0: अच्छा
1: हाँ तो अब भाई खातिरदारी तो करत बन था, यही नाते देखा इतना कुल सामान ले आई। बोला हमें लगा कि जैसे गदेलन हैं जैसे पैसा दे दे तो यहाँ हर में वो उड़ाए
0: दुकान
1: देते
0: से,
1: हैं।
0: हाँ
1: हाँ
0: दुकान खा
1: कुछ ना
0: लेते।
1: कुछ उल्टे पुल्टा चीज खाते जोन की नुकसान नहीं करत है।
0: बिल्कुल।
1: तो हम सोचे कैसे ना एक ठो गुल्लक इनका सबका लाए के दे दे कि जोन पैसा इनका सबका

0: बचत बननी है उन्हें में, वो उही में बचत कहके थोड़ थोड़ डालें।
1: बिल्कुल सही कहू, देखा जाना तू गंगा, ये बात बच्चन के बताओ बहुत जरूरी है, काहे कि देखा बूंद बूंद से ही घड़ा भरत है ना।
0: बिल्कुल
1: और जोन बटे छोटी छोटी बचत पता नहीं चलता है, मुना समझ ले अगर ध्यान न दे और सालन से करत रहे तो काफी अच्छी बचत हो जाता है। और देखा जब ये चर्चा तू छेड़िन दिए हो तो हमार मन करता है कि आज बहनी हरिन से यही पर बत कही कर ली जाए कि छोटी छोटी बचत बड़ा सहारा और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि।
0: बिल्कुल बहनी, देखा हम सभी जाने थे कि जीवन में धने के बहुत महत्व बा। धन हमार सबके आवश्यकता के पूरा तो करबे करत है, साथे साथ देखा कठिन समय में हमार सबके सहारा बनत है ना। मूला धन खाली ज्यादा कमाए से ना बढ़त बल्कि समझदारी से बचावे से भी बढ़त है। तो छोटी बचत बड़ा सहारा तबे हुए जब छोटी बचत के अर्थ हम सब जानब, जो जितना भी मनी कमात बा है ना, जेब खर्च से थोड़ थोड़ थोड़ थोड़ बचाई के ओकर रखत जा। वो पता ना चलत शुरू में लागत अरे तो रच के बा एक काव रखी, लेकिन तू देखबू कि धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक इतना मतलब कोनो तो है मतलब अचानक से कोनो दिक्कत आएगी तो वह जो तू थोड़ थोड़ बचाई के धरे हो वो बहुत कामयाबत है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, कहा जाता है कि अगर आजकल के समय में देखा घर परिवार आप कहीं बाहर अगर छोड़ के घर परिवार के छोड़ के बाहर कहीं कमाए रही हो रह रही हो तो देखा ओकर महत्व तब बहुत अच्छा और हो जाई कि जब आप अपने आर्थिक आमदनी में से आपका जो मासिक आमदनी बाटे हाँ ओहमन अगर आपके कुछ मिलता, मान ला अगर हम उदाहरण के तौर पे मानी कि आपका 15,000 रुपया जोन बटे हुआ से वेतन मिलता, तो बहनी ई मान के चल के चाहे इंसान के कि उनका मासिक जोन बटे आमदनी 12,000 बा, 3,000 के तो ऐसे भूल जाए ओका बचत में वो खाता से हटाए के दूसरे खाता में डाल दे ताकि उन्हें ये लगे कि हमार आमदनी 12,000 बा, 12,000 में हमारे घर गृहस्थी चलावे के
0: चलावे
1: ये ऐसा अपने आप के मानसिक रूप से तैयार कर लें। कहे कि ये जो छोटी छोटी वर्तमान में बचत है, अगर आप बाहर गए हो परदेश में कमा रहे हो अगर ना बचत करी हो हाड़े गाढ़े कोनो अगर समस्या आएगी तो घर परिवार वाले बाद में मदद के लिए पहुंची है, सबसे पहला मददगार आपका अपन जेब होता
0: खुद है। देखा आजकल बहनी बीमारी हमारी इतना होत बाटे तो मन बचाए के धरे रहे तो वो गाढ़े समय में काम आवत है।
1: बिल्कुल सही कहती है। और अगर हम आज बचत करके चलब और खाली पैसे की ही बचत नहीं गंगा बहनी, हम तो कहते घर गृहस्थी का जो भी सामान है हाँ, अगर जैसे आप महीने भर का सामान ले आए के रख दीहू तो ई नहीं ना कि ओके फिर बहनी अरे महीने भर का सामान कहो 10 दिन में उड़ाए दिन खात कम है उतना मात्रा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाए के बचत खाएन कम फेंकेन
0: ज्यादा
1: ऐसा न करें, बल्कि हर चीज में एक संयम के साथ एक मात्रा के अनुसार बनावें ओकर इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि देखा आगे भी चल सके। और होशियार बहनी अरिन के देखे हो बू बहनी कि अगर घर से कोनो हम बूढ़ पुरेनियों के देखे रहे अपने दादी हरिन के कि जब घरे से सामान आवत रहा कोनो ढेर सारा तो ओहमन से वो थोड़ थोड़ निकाल के अलग धई देते रहे कि और ही सोचे कि घरे में बस इतना ही बाटे और जो निकाल के रखा गया बा ओकर नाम ही न ले। वो का होता कि जैसे अगले महीने में सामान आवे में देरी हो गई ना ही आ सकी या कोनो कारण तो वही वो आपका रखा हुआ फिर आगे
0: काम दे जाता। बिल्कुल बनी है। देखा आज के समय में महंगाई इतना बढ़त बा ना तो पढ़ाई लिखाई होई गए सेहत होई गए कतौ जाए के बा या जो दैनिक जीवन की आवश्यकता पे खर्च किया जाता है ऐसे समय में अगर हम बचत की आदत ना अपनाई तो भविष्य में देखा आर्थिक कठिनाई तो झेले के पड़ी।
1: बिल्कुल
0: बचत हमें सबके आत्मनिर्भर बनावत है और अचानक जो आवे वाली समस्या बा ना उसे निपटे में बहुत मतलब मदद करत है। हाँ और लड़कियन के देखा जैसे विद्यार्थी जीवन बा अब उन्हें सबके जेब खर्च दे जाते हैं तो हम तो अपने गदिला के सिखाए थे कि जेब खर्च तो है मिला बा लेकिन ओका जोन बा थोड़ तो बचत कर ही ना थे। देखा गुल्लक लड़कियन बिदा ले तो उनका देखा ऐसे का हो एक चीज तो बचत होते दूसरी चीज उनमें अनुशासन आवत है।
1: बिल्कुल
0: उनका जिंदगी जिए के तरीका आवत है कि अगर हम थोड़ थोड़ बचत कर के चलब तो हमारा हर काम आसानी से हो जाए जिंदगी।
1: बिल्कुल
0: में।
1: सही कहती हो। अगर आज हम बचत करब तो वही पर बच्चे वाला जो परिवेश बना रहा था घर का वही में अगर बच्चे पल बढ़ रहे हैं तो उनके अंदर भी बचत करे की भावना आ जाता और कोशिश करें उनको कभी भी ज्यादा से ज्यादा पैसा न दे, उतने दें जितना उन्हें आवश्यक है।
0: हाँ
1: फिजूल

0: खर्ची की आदत अगर पड़ जात है लड़कियां से, तो आगे चल के बहुत ही जोन बटे दुखदाई हो जाता,
1: दुखदाई होते। और ये सब एक देखा महिला ही कर सकत है, कहे से कि देखा एक बात और कह रहे, छोटी बचत बड़ा सहारा, दूसर का महिलाओं की आर्थिक समझदारी। तो अगर महिला देखा समझदार रहे आर्थिक चीज के लेके, तो घर बड़ा संयमित रहा थे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कहा जाते है ना कि अगर एक पुरुष शिक्षित होते तो खाली एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित और आर्थिक रूप से जागरूक होते ना, तो पूरा परिवार आवे वाली पीढ़ी के सशक्त बनावा था।
0: बिल्कुल, कहे के मतलब यह है कि एक कहा जाता है कि बहुउद्देशीय जो बहनी हरे हैं, जेका आजकल हमा बिटिवा एक दिन अंग्रेजी में कहे लगिन कि मल्टी टास्क वुमेन, हाँ यह पर वो निबंध लिखत रहिन, ऐसे लिखत रहिन, हाँ तो कहिन कि यह पर लिखे कहे, तो हम जब वो लिखत रहिन और बतावे लगिन वहाँ पर, तो हम सोचे लगे कि जोन लिखे थे नहीं, तो हम लोग दैनिक जीवन में रोज ये काम कर रही है।
1: आज देखन, आज ना सदियन से देखा, हाँ। जो बहनी हरेन है वो कैसे थोड़ थोड़ पैसा के अलगा अलगा अलगा रखत रही सामान, जैसे बताओ अपनी की सामान अलगा अलगा रखत रही है, तो मतलब इकर जो आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सा रहिन हमेशा से, चाहे घर के बजट बनाई होए और चाहे सीमित संसाधन में परिवार के चलाई होए। देखा अगर थोड़ के चीज बत, वही में काज कपट के घर परिवार के अपने पूरा करत रही।
0: बिल्कुल सही कहती है।
1: तो देखा भविष्य के लिए बजट बहुत जरूरी है, एमे हमार बहनी हरन हमेशा समझदारी के मतलब परिचय दिए हैं।
0: बिल्कुल सही कहती हो, और छोटी छोटी बचत जीवन में बहुत ही बड़ा सहारा होता है, और इस सहारा का देख उदाहरण के रूप में प्रस्तुति कब मिली रही, जब कोविड जैसी समस्या आई रही बहनी, है ना, कोरोना जैसन समस्या आई रही, तो हमन जौन बहनी हरिन का जमा पूंजी बचत रही, वही देखे रहो सारा कहती काम बंद हो गया रहा, भैया हरे परदेश से घरे आ गया रहन, है तो वही उनकर जौन छोटी छोटी पूंजी के बचत बहनी हरे रहिन, वही उनका सहारा बना रहा।
1: बिल्कुल बहनी, तो देखा आज आवश्यकता यही बात के बा कि हम अपनी बहन बिटिया के शिक्षा ही ना बल्कि आर्थिक शिक्षा भी देई, उन्हें बैंकिंग, बचत, निवेश, बीमा और हर तरह की जानकारी उन्हें प्रदान करी, जो जैसे कि वो आर्थिक रूप से सशक्त महिला और आत्मविश्वासी महिला बन सके।
0: तो देखा
1: इतनी बढ़िया बढ़िया बात कही हम सब करत गए, तो अब एक बढ़िया से झूमर सुन लिया जाए शशि जैन बहनी से।
0: चला तू सुना, हमार बहनी भरे सुने,
1: चला सुना जाए।

0: सत्या बहनी, देखा गीत गाओ नहीं होत रहा थे तो मन कितना बढ़िया हो जाते ना।
1: बिल्कुल, और अपने पनघटे के जोन बाटे अगर गीत गाओ नहीं ना हो तो सब कुछ अधूरा अधूरा
0: अधूरा रहा था। बिल्कुल बहनी, तो देखा अब गीत गाओ नहीं सुन ली हो तो एक बातचीत बा अपने पनघटे पे, क्या घर का काम सिर्फ बहू की जिम्मेदारी? तो इमें विमला अग्रवाल बहनी से रीता रानी बहनी बात किए हैं, तो चलो सुना जाए। और
1: बिल्कुल सुना जाए, और हमें लगा था कि आज का ये विषय अपने घरे में रहे वाली हर बहनी हर इनके बहुत पसंद आए,
0: बहुत दिल मतलब उनका जुड़ाव महसूस हो ये विषय से।
1: बिल्कुल,
0: तो चलो सुना जाए।
2: समाज के सबसे छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग है, या केवल ईंट और छत का सहयोग नहीं बल्कि प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी का केंद्र है। अगर देखा जाए तो घर के सभी कामों की जिम्मेदारी केवल बहू के ऊपर थोप दिया जाता। खाना बनाना है, सफाई है, बच्चों की देखभाल है, बुजुर्गों की सेवा है, ये सब काम केवल होते है कि हाँ जौन बहू आए वह करे। लेकिन का ये न्यायपूर्ण है? केवल बहनी हरन के ही घर संभाले की भूमिका काहे दी जाता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य, पति हैं, बेटे हैं, बुजुर्ग, कभी जिम्मेदारी तो होता। और देखा यहाँ समय आधुनिक समय में जब बहनी अरे शिक्षा और करियर दोनों में सक्रिय हैं तो यह सवाल तो और भी प्रासंगिक हो जाता ना। तो यही सब जानकारी लेवे खातिर आज हम अपने कार्यक्रम में बुलाए हैं बहनी विमला अग्रवाल के। तो विमला अग्रवाल बहनी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप ये बतावें का केवल घर की जिम्मेदारी बहू के ही होता है या किसी अन्य का?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, घर के काम घर के सारे सदस्यों की जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: क्योंकि जो उस घर में रहते हैं,
2: हाँ हाँ,
3: जब घर सबका है,
2: हाँ हाँ,
3: तो घर के काम भी सभी के हैं।
2: बिल्कुल बहनी, कि जब घर में लोग हैं तो घर का काम भी सबका।
3: बिल्कुल
2: हाँ,
3: अगर पति, सास ससुर, देवर ननद,
2: हाँ,
3: सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा हाथ बटा दें,
2: हाँ हाँ,
3: तो बहू को भी सहयोग मिल

0: जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि जब एक लड़की ब्याह के ससुराल आती है
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उसके भी कुछ सपने होते हैं, और आते ही अगर कुछ दिनों में उससे कह दिया जाए कि अब घर के सारे कामों की जिम्मेदारी
1: हाँ
0: तुम्हारी है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: सुबह की चाय से लेके रात के बर्तन साफ करने तक, तो ये अच्छा नहीं है।
1: बिल्कुल बहनी, आप सही कहत हैं कि एक लड़की जोन ब्याह के आई बटे और ओकरे ऊपर घर का पूरा सवेरे से लेके शाम तक पूरा काम थोप दिया जाए कि नहीं तोहार जिम्मेदारी हो, तो वो

0: कि एक लड़की जौन ब्याह के आई बटे और ओकरे ऊपर घर के पूरा सवेरे से लेके शाम तक पूरा काम थोप दिया जाए कि नहीं तोहार जिम्मेदारी हो। तो वो देखा विमला बेनी, वो लड़की अभी नया नया ब्याह के आई बा, अभी वो घर के सारी जिम्मेदारी के बारे में ना ही जानत है।
1: वही तो।
0: काहे कि वो एक अपने माँ बाप का घर छोड़ के वो जौन बाटे दूसरे घरे में आई बा,
1: बिल्कुल।
0: तो धीरे धीरे वो घर के बारे में सब कुछ जान
1: तो
0: जाए।
1: क्या
0: तो किसी भी लड़की के ऊपर एकाएक इतना भार ना सौंप दिया जाए।
1: और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम पति पत्नी दोनों के सहयोग से ही चलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बहने, सही कहा था।
1: पहले के समय में पुरुष खेतों में जाकर काम करते थे,
0: हाँ
1: व्यापार संभालते थे,
0: हाँ
1: और महिलाएं
0: घर पे रह
1: पूरा
0: के।
1: दिन घर पे ही रहती थीं। वो
0: हाँ,
1: बाहर की दुनियादारी से उनको जानकारी ही नहीं
0: नहीं
1: थी,
0: कोनो मतलब नहीं रहा।
1: है।
0: हाँ,
1: लेकिन आज का समय बदल चुका है।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बहनी।
1: आज महिलाएं हर क्षेत्र में कार्यरत हैं,
0: हाँ,
1: चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, या चाहे कुछ भी हो, व्यापार का हो। तो जब काम बट गया है तो बाहर का काम अगर महिलाएं करती हैं तो घर के कामों में भी सहयोग देना पुरुष का कर्तव्य है।
0: बिल्कुल होता बहनी, कि जब बहनी हरे मार जिसे पढ़ लिख ले हैं, बाहर जात हैं और जब आवत हैं तो का वो थकी मांदी नहीं हैं, उन्हों तो थकी हैं, तो घर वालन के उनका पूरा पूरा सहयोग करे के जाए।
1: और आज बेटियां भी बेटों के बराबर पढ़ लिख रही हैं।
0: जी।
1: जब कमाने की जिम्मेदारी बट गई तो
0: हाँ,
1: घर संभालने की क्यों नहीं?
0: काहे नहीं बहनी, सही कहा था।
1: बहू को घर में ठीक से प्यार दुलार से रखने में सासू माँ की भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
0: बिल्कुल बहनी, देखा ये तो बिल्कुल तू पते का बात कहो कि जौन बाटे कि सासू माँ के जौन बा सबसे बड़ा योगदान हो चाहे अपने बहू के प्रति। कहे कि अगर सासू माँ लड़की के संगे प्यार से पेश आई तो वो लड़की जहाँ उके दुई काम करेगी वह वहाँ चार काम कह के दिखाए।
1: क्योंकि वो जो लड़की ब्याह के आई है
0: हाँ,
1: अपने माँ बाप भाई बहन अपनी पहचान सब कुछ छोड़ के आई है, किसके लिए? एक पति के भरोसे ही,
0: एक पति के भरोसे और एक रिश्ता
1: है,
0: के निभावे
1: और एक
0: खाते।
1: रिश्ता निभाने के लिए।
0: हाँ,
1: लेकिन जब सास ही ताने तुलना और चुगली करने की अपनी आदत बना ले तो
0: हाँ,
1: फिर वो वही जगह बहू के लिए सबसे भारी जगह बन जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तहार बात बिल्कुल सही कहत हो कि अगर कोनो कोई मने ताना कसी क्यों करे और क्यों सास ओकर बात एहर सोहर करे तो वहाँ पर वहाँ समय पर तो जौन बा बहू के अंदर बहुत ग्लानि हो जात है कि हम इनके परिवार के लिए पूरा अपन तन मन समर्पण कर दे है, ओकरे बावजूद भी ये हर के बात ओहर करत हैं तो यहाँ अच्छी बात नहीं
1: नहीं
0: होते।
1: है। और घर का माहौल बनाने में या बिगाड़ने में सास का बहुत बड़ा रोल होता है।
0: बिल्कुल सही कहा था बहनी।
1: अब वो छोटी छोटी सी बात को चाहे तो बेटी समझ के समझा दे कि
0: हाँ,
1: बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, है। और चाहे तो उसी का एक बड़ा मुद्दा बना दे कि ऐसे नहीं, ऐसे कर दी। अब फिर वो
0: बिल्कुल।
1: लगातार बोलेंगी तो बहू भी कितना देर तक बर्दाश्त
0: भाई
1: करेगी?
0: देखा, आदमी एक बार सहे, दूई बार सहे,
1: हाँ,
0: तीन बार सहे, चौथे बार में तो जवाब दे दे।
1: देगी।
0: अब जब जवाब दे दे तभी हो जाए कि अरे भैया वो तो संगे संगे जौन बा बहस करत थीन, बात लड़ावत थीन।
1: पहले तो शुरू में बहू चुप रहती है, सहन करती रहती है,
0: हाँ,
1: क्योंकि उसे सिखाया गया है कि घर संभालना और
0: उनका
1: उसका
0: जिम्मेदारी है।
1: बचाना उसकी जिम्मेदारी
0: जी
1: है।
0: जी जी जी हाँ
1: अब काश कोई ये भी समझे कि घर बसाने के लिए सिर्फ बहू का सब्र नहीं,
0: हाँ
1: सास का दिल भी बड़ा होना
0: बहुत बड़ा,
1: चाहिए।
0: सास का दिल भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आप तोहार बात जौन बा 100% सही कहत हो बहनी। हाँ
1: एक बहू देखिए घर की शान होती है,
0: हाँ
1: संस्कारों की पहचान होती है
0: जी हाँ,
1: और परिवार की जान
0: जान
1: होती
0: होती
1: है।
0: है। हाँ
1: और एक समय के बाद जब सास का बिल्कुल भी नहीं जी चलता
0: हाँ हाँ
1: तो परिवार समाज रिश्तेदारी नातेदारी सारा चीज तो बहू के ऊपर आ जाता है
0: काहे
1: ना।
0: नहीं भाई, भाई जब जब जब से सास करत हैं तब से
1: हाँ,
0: ठीक बात, जब सास का काम बंद हो जाता है तो वहाँ जगह पर तो सास की जगह बहू की जिम्मेदारी आ
1: तब तो
0: जाती है ना।
1: एक न एक दिन पूरा उन्हीं को संभालना पड़ता
0: बिल्कुल बहन,
1: है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: अगर सास शुरू में ही ये चीज समझ ले
0: हाँ हाँ
1: कि बहू को ऐसा बना के रखें कि वो अच्छे से सारी जिम्मेदारी संभाल
0: हाँ
1: सके,
0: हाँ हाँ हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: और उनको बात बात पर ताने न दें और वही चीज अच्छे से प्यार से समझाएं, क्योंकि बहू को जैसा प्यार करेंगे वैसे वो भी प्यार करेगी,
0: हाँ, और जितना तू प्यार करबो उतना तो है इज्जत भी
1: इज्जत
0: देव।
1: देगी।
0: हाँ।

0: और
1: बिल्कुल
0: एक आदर्श परिवार में कामों का बंटवारा इस तरह होना चाहिए
1: हाँ हाँ
0: कि किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक बोझ ना पड़े।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: इससे परिवार में संतुलन बना रहता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ भाई जी, अगर काम लोगन के अंदर बांट दिया जाता ताकि हाँ तोहके ई काम करना बा तोहके ई काम करना बा, तो अगर एक आदमी का काम चार आदमी भी बांट दिया जाए तो काम भी आसानी से हो जाए और जौन बा केहू के ऊपर भार भी न पड़े।
0: और आज आवश्यकता इस बात की है
1: हाँ हाँ
0: कि हम पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलें
1: हाँ
0: और नई सोच को
1: जी
0: अपनाएं।
1: जी जी जी
0: हमें यह समझना होगा
1: हाँ हाँ
0: कि घर चलाना केवल बहू का काम नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: घर चलाना पूरे परिवार की
1: की
0: जिम्मेदारी
1: जिम्मेदारी
0: है।
1: होता है, बिल्कुल सही कहो बहनी। हाँ
0: जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं तो ना केवल काम जल्दी होता है बल्कि आपसी प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल बहनी बिल्कुल एकदम तुम्हार बात बिल्कुल सही हो कि जब अगर काम आदमी मिल के करत है तो लोगन में आपसी प्रेम बनत है, सहयोग बनत है और काम बड़े आसानी से हो जाते है।
0: तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा
1: हाँ हाँ
0: कि परिवार क्या है। परिवार केवल कुछ लोगों का एक साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि यह प्रेम, त्याग, सहयोग और जिम्मेदारियों का एक सुंदर संगम है।
1: बहुत सही। हाँ हाँ बहनी
0: जिस प्रकार किसी टीम की सफलता उसके सभी खिलाड़ियों के योगदान पर निर्भर करती है,
1: हाँ हाँ
0: कप्तान चाहे जितना भी अच्छा हो
1: हाँ
0: लेकिन वो अकेले टीम का पूरा काम नहीं कर
1: नहीं
0: सकता।
1: कर सकता बहनी, कि जैसे तू कहत हो ना कि टीम में एक कप्तान होता और 8-10 खिलाड़ी होते हैं, हाँ? तो बिना खिलाड़ी के सहयोग से कप्तान कुछ भी नहीं कर
0: कुछ भी
1: सके।
0: नहीं कर
1: वही
0: सकता।
1: तरह से परिवार में जितना सदस्य हैं अगर पूरे सदस्य काम न करें तो जो परिवार का मुखिया होता वो कुछ भी नहीं कर
0: कुछ
1: सकत
0: भी
1: है।
0: नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमारा कहने का ये कि यानी अगर बहू पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दें तो यह न केवल अन्याय होगा बल्कि इससे परिवार में तनाव और द्वेष भी एक समय के बाद उत्पन्न होने लगेगा।
1: बिल्कुल सही कहा था बहनी।
0: पुराने समय में सामाजिक व्यवस्था अलग थी लेकिन आज का समय बदल चुका है।
1: हाँ
0: आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, शिक्षक, अधिकारी, वैज्ञानिक, पुलिस और व्यवसायी के रूप में देश और समाज की सेवा कर रही हैं।
1: बिल्कुल बहनी, देखा ये समय बदल चुका बा। हाँ
0: जी
1: और इतनी महंगाई का समय आ गया बा कि बिना पूरा परिवार में हर आदमी के कमाए आगे गाड़ी जोन बा नहीं चल
0: नहीं
1: सका
0: चल
1: था। लोग
0: सकती।
1: कहते ना बिमला बहनी कि देखा पति पत्नी एक गाड़ी के दुई पहिया होते हैं, अगर एक पहिया चलत रहे एक पहिया रुकी रहे तो गाड़ी कैसे आगे
0: नहीं
1: बढ़े।
0: चल सकती।
1: और ये महंगाई के समय में हर लोगन के अपन कदम जौन बा बाहर निकालना बा और 4 पैसा कमाना बा ताकि जौन बा गाड़ी आराम से चल
0: चलती
1: सके।
0: रहे और घर की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर हो
1: हाँ हाँ
0: तो उसे भी मजबूत बनाने में योगदान करती हैं
1: बिल्कुल हाँ
0: बहुएं।
1: बिल्कुल वही चीज हम कहा ना कि जब बहनियर भी काम करती
0: हाँ
1: घर में जौन बा अपने पति के आर्थिक सहयोग करती तो गाड़ी काफी आगे निकल चलत है।
0: और ऐसे में यदि उनसे यह अपेक्षा की जाए कि वे नौकरी भी करें और घर का सारा काम भी अकेले संभालें
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: यह उचित नहीं
1: नहीं
0: होगा।
1: नहीं ये उचित ना हो, सही बात हो। अब देखा लोग कहते हैं ना कि चाहे बहू हो, एक बहू हो चाहे दुई बहू हो, देखो वो भी तो इंसान है ना, कहे कि वो जब बाहर जा घर का भी काम करते बाहर भी काम करते तो वो थक जाते हैं, इसलिए अगर परिवार मिल के काम बांट के करे तो वह काम बड़े आसानी से हो
0: हो
1: जाते
0: जाए।
1: हैं।
0: अब बहू भी परिवार की एक सदस्य होती है, सेविका नहीं
1: हाँ
0: होती
1: हाँ थोड़ा बाकी हाँ वो सबका
0: है,
1: सेवा करे वाली
0: उसे भी
1: हैं।
0: पूरा सम्मान, स्नेह और सहयोग मिलना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जो जो हम देंगे वही हमें भी
1: हमें मिले
0: मिलेगा
1: मिले।
0: है। अब अक्सर समाज में हमें यह धारणा देखने को मिलती है कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना केवल बहू की ही जिम्मेदारी है लेकिन वास्तव में घर के काम का कोई लिंग नहीं होता
1: हाँ
0: है।
1: हाँ हाँ
0: भूख
1: हाँ
0: पुरुष को भी लगती
1: यह
0: है
1: महिला
0: और
1: की भी
0: महिला
1: लगन
0: को भी लगती
1: जी
0: है
1: जी जी जी
0: और घर की सफाई सभी के लिए आवश्यक होती
1: भाई,
0: है।
1: इसलिए कि उम्मे घर में सब रहते हैं तो
0: बस
1: सबका दायित्व होता कि वो कार्य के सब मिल के करें।
0: मिलके करें। अब बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों की जिम्मेदारी
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: ऐसी स्थिति में घर के कामों को पुरुष और महिला के आधार पर बांटना उचित नहीं है।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कहीं आप।
0: एक आदर्श पति वह होता है जो अपनी पत्नी के सुख दुख में

0: जी
1: बराबर का
0: बराबर का
1: भागीदार
0: भागीदारी
1: होता
0: होता है, माने
1: है।
0: पति वही होते हैं जौन की
1: हाँ
0: अपने पत्नी के अगर कोनो कष्ट बा तो वो कष्ट के समझे
1: समझे।
0: ओकर निवारण
1: अब
0: करे।
1: जैसे मान लीजिए कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, रोज तो वो खाना बनाती ही है, और अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो ये ना समझे कि मैं पुरुष हूँ, मेरा ये काम नहीं है, तो एक मुसीबत पड़ने पर वो भी उसको बना के खिला सकता
0: खिला
1: है
0: सकता है भाई, काहे नहीं खिलाए
1: हैं?
0: सकत, काहे कि भाई लोग कहते हैं ना कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं,
1: वही
0: हम तुम्हारे हम तोहरे लिए करी वो हमरे लिए करें।
1: जैसे यदि पत्नी रसोई में काम कर रही है और तो पति भी आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद कर सकता है,
0: कर सकत हैं
1: उसी
0: बिल्कुल।
1: प्रकार बच्चों को स्कूल छोड़ना,
0: हाँ हाँ
1: बाजार से सामान लाना,
0: जी जी
1: घर की सफाई या अन्य कामों में भी सहयोग करने से पत्नी को काफी मदद मिल जाती
0: बहुत ज्यादा
1: है,
0: बहुत मदद मिल जाता बहनी, और एक साथे साथे जौन बा
1: उसके
0: उनका
1: काम
0: काम
1: का
0: का जौन बोझ होता ना
1: थोड़ा
0: वो
1: कम हो
0: हल्का
1: जाता
0: हो
1: है,
0: जाता।
1: हल्का हो जाता है।
0: अच्छा देखा बहनी, घर में देखा सास ससुर भी होते हैं हाँ, जौन की वो घर के सबसे वरिष्ठ नागरिक
1: वरिष्ठ
0: होते हैं,
1: नागरिक होते
0: तो
1: हैं।
0: इनके लिए तो हर का जौन बा धारणा बा।
1: अब उनके सास ससुर के जो अनुभव होते हैं
0: हाँ हाँ
1: तो उनके अनुभव और मार्गदर्शन से ही तो परिवार आगे बढ़ता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: यदि वे बहू को बेटी की तरह अपनाएं, उसकी परिस्थितियों को समझें
0: हाँ हाँ
1: और उसे सहयोग दें
0: हाँ
1: तो घर में प्रेम और सौहार्द बना रहता
0: बिल्कुल
1: है
0: बहनी बिल्कुल,
1: और
0: घर
1: वही
0: जौन
1: घर
0: बा स्वर्ग
1: स्वर्ग
0: बन
1: बन
0: जाए
1: जाता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: अब देखा देखा जाता विमला बहनी की जौन घर में जौन बड़ा बुजुर्ग होते हैं हमारे सबके ऊपर, जैसे कोनो भी परेशानी आए कोनो दुख पड़ा तो हम सबके उचित जानकारी ना ही रहत, तो वहाँ समय जौन घर के बुजुर्ग रहते हैं वो हमें सबके काफी अच्छा मार्गदर्शन देते हैं
1: बहुत अच्छा देते
0: जी।
1: हैं, क्योंकि वृद्ध मनुष्यों के अनुभव जीवन की खुली पुस्तक के समान होते
0: जी जी
1: हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि जिस स्टेज से आज हम लोग गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं,
0: जी जी
1: तो
0: हाँ
1: उनके अनुभव ज्यादा हैं। तो बहू से केवल काम की अपेक्षा करने के बजाय यदि उसे सम्मान और अपनापन दिया जाए
0: हाँ
1: तो वह भी पूरे मन से परिवार की सेवा
0: सेवा
1: करती
0: करत है
1: है।
0: जी हाँ, और जहाँ देखा सहयोग होता हुआ सुख और शांति रहता, जहाँ केवल अपेक्षाएं होती बहनी और हुआ तनाव और विवाद
1: विवाद
0: होत
1: होता
0: होता।
1: है। तो जैसे एक परिवार, अब देखिए जैसे एक परिवार की बहू के प्रति जिम्मेदारी होती है, तो
0: हाँ
1: अब वैसे ही बहू की भी परिवार के प्रति जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी
1: होती
0: होते
1: है।
0: सही कही मैंने हाँ,
1: रिश्ते केवल अधिकारों से नहीं
0: बल्कि आपसी सम्मान सहयोग और कर्तव्य से चलत
1: कर्तव्य
0: है
1: से भी चलते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: अब बहू की जिम्मेदारियों में परिवार के सदस्यों का सम्मान करना,
0: हाँ
1: घर की आवश्यकताओं को समझना,
0: हाँ परिवार के सुख दुख में सहयाग सही
1: सहभागी
0: हाँ
1: बनना
0: हाँ
1: और प्रेम और सद्भाव बनाए रखना तथा अपनी क्षमता के अनुसार घर के कामों में सहयोग देना भी शामिल है।
0: बिल्कुल, और जानत ही बनी यदि परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनका आदर करना और बच्चों में अच्छे संस्कार देना भी बहुत महत्वपूर्ण
1: महत्वपूर्ण माना
0: माना
1: जाता
0: जाता
1: है।
0: है, काहे कि लोग कहते हैं देखा विमला बहनी कि माँ ही बच्चे का प्रथम पाठशाला और प्रथम शिक्षिका होती, जैसे महतारी करती वैसे ही बच्चा
1: सीखते
0: सीखत हैं,
1: हैं
0: तो अगर बहू भी अपने सास ससुर का सम्मान करे तो बच्चे भी अपने दादा दादी का सम्मान करते
1: करेंगे
0: देखी तो वो
1: करेंगे
0: लोग भी अपने माई बाप का सम्मान करेंगे।
1: करेंगे। अब परिवार एक साझेदारी है जहां हर सदस्य का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बहू का कर्तव्य परिवार को जोड़ना है
0: ना कि बिखेरना
1: ना कि बिखेरना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वही परिवार का कर्तव्य है कि बहू को अपनापन, सम्मान और सहयोग
0: सहयोग देना
1: दे।
0: जी जी
1: इसीलिए आदर्श परिवार वही है जहाँ बहू अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे और
0: हाँ
1: परिवार भी उसके अधिकारों, भावनाओं और
0: सब
1: सपनों का सम्मान करे,
0: हाँ, तब है
1: तभी
0: परिवार में बहनी प्रेम विश्वास और खुशहाली
1: बनी
0: बनी रहे।
1: रहेगी।
0: तो देखा विमला बहनी आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी नीक नीक जानकारी दें, एकरे लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जान लिहु कि अब घर गृहस्थी केकर जिम्मेदारी है।
0: सबकर जिम्मेदारी है, घरे के हर प्राणी की जिम्मेदारी
2: बिल्कुल,
0: है।
2: कहे का मतलब है अगर केहू एक पर बोझ डाल देबा
0: हाँ
2: तो शारीरिक बोझ के साथ साथ मानसिक बोझ में भी आ जाए,
0: दब जाए,
2: है
0: बिल्कुल
2: ना।
0: बिल्कुल
2: ऐसे जरूरी है कि घर गृहस्थी का काम हो चाहे जहाँ का। देखा हम लोग कहीं भी जाई था तो एक सूझबूझ के साथ, यहाँ तक कि लड़कियों से स्कूल में भी सिखावा जाए लगा था कि
0: हाँ
2: हर व्यक्ति का अपन अपन का काम है, अपन कैसे करे के चाहिए
0: बिल्कुल
2: जिम्मेदारी।

0: जो भी दिन
1: तो कुल काम मिल बांट के आदमी कर ले तो एक आदमी पे भार न पड़े कोनो भी
0: और चुटकियों में काम हो जाता काम है ना। तो देख इतनी अच्छी जब बातचीत सुन लेंगवा हाँ। तो हमारा मन करताटे इखनी नीक नीक गीत सुन लें जाए बंदनी फिल्म से
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में। चला सुना जाए।

0: देखो कितनी अच्छी गीत रही है ना,
1: ना?
0: बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया
1: एकदम, तो हर मन प्रसन्न हो गया। अब हम तो का बढ़िया से एकदम देखा, ये इतनी गर्मी पड़त बना। अब इस गर्मी में देखा आज हम अपने रसोई घर के पनघटे में लाए हैं फ्रूट कस्टर्ड।
0: अरे वाह, तब बहनी एक काम कर,
1: मन ठंडा हो गया,
0: मन ठंडा हो गया। ऐसा कर, अब तू हमका दे दे, हम खात रही और उकरे साथ साथ
1: हाँ।
0: तू एकर बनावे के विधि हम अपने बहनी हरन से साझा कर।
1: बिल्कुल बनी, देखा चार पांच लोगन के लिए अगर फ्रूट कस्टर्ड बनावे एक बार तो ओकरे लिए सामग्री ले ला आधा लीटर दूध, ठीक बा? तो दो बड़ा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ले ले, या कोनो मतलब कस्टर्ड पाउडर जो नावत है जोन पसंद हो ओका ले ले। तीन चार बड़ा चम्मच चीनी ले ले स्वाद के अनुसार, अगर क्यूक ज्यादा पसंद बा या क्यूक कम पसंद बा तो वही हिसाब से। और एक कप कटा हुआ मिश्रित फल ले ले, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, आम हो गया, देखा आम मौसम के हिसाब से मिलत बा, अंगूर हो गया, अनार के दाने हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया,
0: हाँ
1: ये सब जोन भी फल बात हो रहे लगे वो फल काट के डाल ला।
0: और अगर इच्छा हो तो छोटा छोटा मेवा भी काट के डाल दे,
1: हाँ वो का तो ऊपर से सजावट भी डाल सकते है। अब जोन कस्टर्ड घोल तैयार करेगी वह, एक छोटे बर्तन में कस्टर्ड पाउडर ले लें, ठीक, एमा तीन चार बड़ा चम्मच ठंडा दूध डाल के अच्छी तरह मिलावे ताकि गांठ ना रहे उनमें।
0: अच्छा
1: हाँ, अब वो का एक तरफ रख के दूध उबाल लें, बाकी दूध के एक पतीले में डाल के उबाल लें, उबलते दूध में चीनी डाल के घुले तक चलावें, ठीक। अब कस्टर्ड पका लें, गैस की आंच एकदम

0: धीमी कर दें। जौन तैयार किए हो घोल के कस्टर्ड थोड़े से दूध में, ओका धीरे धीरे दूध में डालत जा और चलावत जा।
1: अच्छा,
0: है ना, दो तीन मिनट तक पकावा ओका, जब तक कि जौन मिश्रण बा वो गाढ़ा ना हो जाए। अब ओका ठंडा कर दा, गैस बंद कर दो और कस्टर्ड के कमरे के तापमान तक ठंडा हो दे पहले। है ना, अब ओमे ओका जौन बा एक दो घंटा के लिए फ्रिज में ठंडा हो इधर रख दा। ओकरे बाद ओमे फल मिलावा, जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो ओमे जोन कटा हुआ फल रखे हो हल्के हाथ से ओका मिलाए दा ओमे। चाहे तो ऊपर से जैसे कहो कि बादाम पिस्ता काजू जोन जोन भी डालेगा ऊपर से डाल दे। अब ठंडा ठंडा ओका सर्व मतलब दे सबका।
1: हाँ, जो परस दें।
0: और एक चीज करें कि केले केला के परोसा इसे ठीक पहले डली है तो नहीं तो काला पड़ जाता
1: है कि हमन जो लौह तत्व पावा जाता ना,
0: तो ये करें। बाकी देखा इतना स्वादिष्ट और ठंडा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो जाता है, ये गर्मी में खाए के मन एकदम बढ़िया हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहती हो बहनी, यही बात पे चला एक और गीत सुन लीन जाए, कहे कि मन भी प्रसन्न हो बहुत जरूरी है।
0: हाँ, वंदनी फिल्म से लता मंगेशकर जी की आवाज में चला सुना जाए एक और गीत।

0: सत्यवहिनी,
1: हाँ
0: देखा गीत गवनई और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी, इतना सब कुछ हमें सब पनघटे पे बतियाए थे, कितना नीक लागत है ना।
1: बिल्कुल सही कहती हो। और देखा घरे से जब हम लोग आवे लगी था,
0: हाँ।
1: तब ही मन में विचार बनाए ली थे कि आज बहनी हरन से यह पर चर्चा की जाए,
0: हाँ।
1: यह पर बातचीत की जाए। और देखा जब हम लोग इतना पहले से तैयारी करके रखी थी कि आज बहनी हरन से ऐप पर चर्चा की जाए, ऐप पर बात की जाए, आज गंगा बहनी आई हैं तो उनसे ई चीज कहा जाए,
0: हाँ,
1: है ना।
0: हाँ।
1: तो देखा जैसे हम तो से कोनो बात कही था,
0: हाँ।
1: तो तू अपन ओका प्रतिक्रिया हमें देतू, है ना, कि
0: तोह
1: कैसन लगता,
0: हाँ।
1: कैसन नहीं लगता। तो
0: बिल्कुल।
1: देखा हर व्यक्ति ई चाहत है कि अगर हम कोनो काम कह रही, कोनो बात कह रही है बहनी हरन से, अपन विचार साझा कह रही, तो ओके जवाब के रूप में अपन विचार हम लोगन तक पहुँचावा, है ना।
0: तो ओकर कुछ प्रतिक्रिया मिलत है, राय मिलत है, तो
1: मन
0: और
1: प्रसन्न
0: अच्छा
1: हो
0: होता है
1: जाता
0: ना।
1: है ना।
0: तो इसी पे एक तो ईमेल संदेश सुन ले बनी हरन।
1: बिल्कुल।
2: जहाँ बातन में हो था अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े के एक अदृश्य डोर है बहनी हरन। हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी हैं।
3: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: panghatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMME।

0: एट द रेट ऑफ gmail.com, पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
1: सत्यवेनी,
2: हाँ
1: देखा इंतजार रही, और जैसे पनघटे पे आए के बाद ना मन कहा था कि कितना बतियात रहे, कितना बतियात रहे, बहनी हरन से गीत गवने ही होत रहे थे।
2: गनवा याद आ जाता बहनी कि मन कहे रुक जा रे रुक जा, यही पे कहीं है ना मुने। देखा
1: हाँ,
2: देख समय कभी केहू के लिए नहीं रुकते, अपन रफ्तार बनाए रहता, तो अब हमहू लग के विदा लेवे के चाहिए। राम राम बहनी हरन।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: The weather agency has predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbh and West Rajasthan. In men's cricket, India A has set a target of 278 runs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium in Sri Lanka. The men in blue scored 277 runs for the loss of 6 wickets in 50 overs. For India, Ruthuraj Gaikwad's century coupled with a 150-run partnership with Tilak Verma helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Tambola, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार

0: प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा

0: लीएनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने

0: पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र स्टूडियो के घड़ी में दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: लीजिए अब सुनिए लोकगीत के कार्यक्रम में पुरुषोत्तम का गाया ये देवी गीत।

चाही बरसे अंगरवा चाही झूलई के पड़ी हंसी पे झूलनवा हंस कर

अभी आप सुन रहे थे कहरवा, लीजिए अब सुनिए फूलचंद शर्मा और साथी का गाया ये देवी गीत।

इसी के साथ लोकगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। आज की हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। हम आपको बता दें, विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम धरती के गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत विभव शंकर और साथियों के स्वर में।

0: विभव शंकर और साथियों की आवाज़ में अभी आपने सुना देवी गीत, इन्हीं की आवाज़ में लीजिए सुनिए निर्गुण।
1: आए के हम के

विभव शंकर और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना निर्गुण। इसी के साथ धरती के गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक

0: है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करे, ट्रेन को जाने दे और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करे। याद रखे, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल डियर लिसनर्स।
1: कहते हैं कि हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हर नई शाम कुछ नया सीखने का संदेश देती है। इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका अपना प्रोग्राम युवानी लेकर, और आज मैं हूँ आपकी दोस्त सेजल
0: और मैं हूँ आपकी साथी उन्नति।
1: वैसे
0: सेजल, तुमको एक राज की बात बताऊं?
1: हाँ भाई बताओ, राज की बात कौन नहीं सुनना चाहता है।
0: पता है, एक ऐसी चीज है जो हर शख्स के पास होती है, फिर चाहे वो युवा हो, वो बच्चा हो या फिर ओल्ड एज पीपल, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ ज्यादातर लोग उसे कहीं ना कहीं खो देते हैं। क्या तुम बता सकती हो वो क्या है?
1: खैर तुम ही बता दो।
0: उत्साह। जी हाँ, उत्साह। वही उत्साह जो बचपन में हमें सुबह जल्दी उठा देता है क्योंकि उस दिन पिकनिक पर जाना होता है। वही उत्साह जो स्कूल में खेल कंपटीशन के दिन चेहरे पर अलग ही चमक ले आता है, और वही उत्साह जो किसी नए सपने को देखने की हिम्मत भी देता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब जरा याद कीजिए अपना बचपन, जब एक नई ड्रेस मिल जाने पर पूरे दिन खुशी से भर जाता था, जब स्कूल की छुट्टी की खबर सुनकर चेहरा खिल उठता था, जब एक छोटी सी जीत भी किसी विश्व कप जीतने से कम नहीं लगती थी, क्यों नति?
0: बिल्कुल।
1: तब शायद हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन उत्साह बहुत था। फिर धीरे धीरे समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी, सपनों की जगह चिंताओं ने ले ली और हम खुशियों का हिसाब लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत उत्साह से ही होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। कोई वैज्ञानिक अपनी खोज तक पहुंचता है, कोई कलाकार अपनी कला से मिलता है, तो कोई खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है। तो इन सब के पीछे सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि सालों तक जिंदा रखा गया उत्साह होता है। साथियों, जब हम किसी खिलाड़ी को मंच पर खड़े होकर तिरंगा के साथ राष्ट्रगान गाते हुए उसे देखते हैं तो हमें उसकी जीत दिखाई देती है, लेकिन उसकी जीत के पीछे छिपी हजारों सुबहें नहीं दिखाई देती। वो सुबहें जब दुनिया सो रही होती है और वो अभ्यास कर रहा होता है, वो दिन नहीं दिखाई देता जब उसे हार मिली होगी।
1: और वो पल नहीं दिखाई देते जब शायद उसने खुद से सवाल किया होगा कि क्या मैं सचमुच सफल हो पाऊंगा, लेकिन हर बार उसे आगे बढ़ने वाली चीज देती उसका उत्साह, लगन और समर्पण। और यही उत्साह साधारण खिलाड़ियों को असाधारण बना देता है। ऐसा मेरा मानना है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, और वो लिटिल एक्स्ट्रा अक्सर प्रतिभा नहीं बल्कि लगातार मेहनत का जज्बा होता है।
0: क्या बात कही है सेजल। और हम सब यूथ हैं, मतलब हम हर किसी, मतलब कोई भी यूथ होगा तो वो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो अपने भीतर के उत्साह को कभी कम मत होने दीजिएगा। और दोस्तों, जब जब उत्साह जीवित रहता है तो उम्मीदें भी आती हैं, और अगर उम्मीद है तो सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। और वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम
1: हाँ।
0: है। तो इसी पॉजिटिव सोच के साथ चलिए आपको सुनवाते हैं आज का पहला गीत।

0: तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे उत्साह की, उस ऊर्जा की जो किसी शख्स को गिरकर भी उठना सिखाती है। और अगर उत्साह का सबसे सशक्त रूप कहीं दिखाई देता है तो वो खेल के मैदान में। और जब कोई खिलाड़ी अपनी असाधारण प्रतिभा, अथक परिश्रम और उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश का नाम रोशन करते हैं तो राष्ट्र भी उसके योगदान का सम्मान करते हैं। इसी उद्देश्य से भारत में विभिन्न खेल पुरस्कार दिए जाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रमुख भारतीय खेल पुरस्कार। तो चलिए जानते हैं प्रमुख भारतीय खेल पुरस्कार के बारे में विस्तार से।
0: जिसमें पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में हुई थी और साल 2021 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी को पिछले 4 वर्षों में उनके शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना के लिए दिया जाता है।
1: दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन, नेतृत्व और खेल भावना के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में एक प्रशासित पत्र, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, एक औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
0: और इसी कड़ी में तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे उसके कोच का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी स्थापना साल 1985 में हुई थी। इस पुरस्कार का नाम संस्कृत महाकाव्य महाभारत से लिया गया है, जिसमें द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों बंधुओं के गुरु थे। तो बेसिकली ये पुरस्कार खेल में आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के कोचों को सम्मानित करता है।
1: और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। साल 2002 में स्थापित ये पुरस्कार भारत के हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ये पुरस्कार किसी खिलाड़ी के खेल में आजीवन योगदान का सम्मान करता है, चाहे वो उसके करियर के दौरान हो या सेवानिवृत्त के बाद। इस पुरस्कार में सम्मान पत्र, मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है।
0: और पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं बल्कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं और संगठनों को दिया जाता है और इसका उद्देश्य है देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।
1: और आखिरी पुरस्कार है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी MAKA ट्रॉफी। और इसकी स्थापना 1956 और 1957 में हुई थी। ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को दी जाती है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए विभिन्न खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार हमें संदेश देते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि उसके पिछले वर्षों की मेहनत, अनुशासन, धैर्य और समर्पण से मिलती है।
1: जब किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होता है तो वो केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण बन जाता है। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं फिलहाल और आगे बढ़ेंगे, अपने बातों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक और गीत।

0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज में। आज हम आप सभी के सामने एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका जीवन साहस, स्वाभिमान, नेतृत्व और जनसेवा का अद्भुत मिसाल है। जब भी भारत के महान जन नायकों और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों का नाम लिया जाता है, तब बिरसा मुंडा का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक चेतना और एक आंदोलन थे। उन्होंने न केवल अपने समाज को जागृत किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा का मार्ग भी प्रशस्त किया।
1: बिल्कुल, जरा कल्पना कीजिए कि अगर किसी समाज के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े, तो उन्हें किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होगी। ऐसे ही समय में एक युवा नेता के रूप में बिरसा मुंडा का उदय हुआ। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। उनका बचपन प्रकृति की गोद में बीता। जंगल, पहाड़, नदियाँ और खेत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। प्रकृति के साथ यही गहरा जुड़ाव आगे चलकर उनके विचारों और संघर्षों की प्रेरणा बना।
0: साथियों, बिरसा मुंडा ने अपने समाज में नई चेतना का संचार किया।

0: उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों पर गर्व करना सिखाया। वो मानते थे कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आत्मसम्मान और जागरूकता होती है। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, शिक्षा, अनुशासन और सामाजिक एकता का महत्व समझाया। उनके विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोगों ने साथ जुड़ना शुरू किया और धीरे धीरे वो जनजातीय समाज के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए।
1: बिल्कुल, बिरसा मुंडा का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके अनुयायी उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देख

0: वो जनजातीय समाज के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए।
1: बिल्कुल, बिरसा मुंडा का प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके अनुयायी उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देखने लगे। लोगों ने उन्हें धरती आबा की उपाधि दी। ये उपाधि उनके प्रति लोगों के प्रेम, सम्मान और विश्वास का प्रतीक थी। वे अपने लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी भूमि और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहे। आज भी झारखंड, बिहार, उड़ीसा और देश के अन्य हिस्सों में लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ याद करते हैं।
0: साथियों, बिरसा मुंडा केवल एक सामाजिक सुधारक नहीं थे, बल्कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक और प्रेरणादायक नायकों में भी गिने जाते थे। उन्होंने अपने लोगों को संगठित करके अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उनमें ये विश्वास जगाया कि यदि वो संगठित रहेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
1: उनके नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन आंदोलन उलुगुलान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उलगुलान का अर्थ है महान जनक्रांति। ये केवल एक आंदोलन नहीं था बल्कि लोगों के अधिकारों, सम्मान और आत्मगौरव की रक्षा के लिए एक व्यापक जागरण था। इस आंदोलन ने जनजातीय समाज में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया। इतिहास में ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। उलगुलान ने यह संदेश दिया कि समाज की एकता और जागरूकता किसी भी परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति होती है।
0: बिल्कुल साथियों, अक्सर कहा जाता है कि नेतृत्व उम्र का नहीं बल्कि दृष्टिकोण और संकल्प का विषय है, मगर बिरसा मुंडा इसका जीवंत उदाहरण थे। बहुत कम आयु में उन्होंने हजारों लोगों को एकजुट कर दिया। उनके विचारों में स्पष्टता थी, उनके व्यक्तित्व में आकर्षण था और उनके उद्देश्य में जन कल्याण की भावना थी। यही कारण था कि लोग उनसे प्रेरित होते थे और उनके नेतृत्व पर विश्वास करते थे।
1: दोस्तों, बिरसा मुंडा का जीवन हमें पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। उनका प्रकृति से गहरा लगाव था। वे जानते थे कि जंगल, जल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब उनके विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम पेड़ लगाएं, जल संरक्षण करें और प्रकृति का सम्मान करें, तो ये उनके विचारों की को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: तो श्रोताओं, आज के युवाओं के लिए बिरसा मुंडा का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि महान कार्य करने के लिए किसी विशेष परिस्थिति या संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है दृढ़ संकल्प, परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण की। आज अगर कोई विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, कोई युवा अपने गांव या शहर के विकास में योगदान देता है, या कोई व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करता है, तो वो भी उसे प्रेरणा की ओर आगे बढ़ता है, जिसका उदाहरण बिरसा मुंडा ने प्रस्तुत किया था।
1: मित्रों, दुर्भाग्यवश 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति की महानता उसकी आयु से नहीं बल्कि उसके कर्मों और समाज पर पड़े प्रभाव से मापी जाती है। इतने कम जीवन काल में उन्होंने जो जागरूकता, आत्मसम्मान, संगठन और संघर्ष की भावना जगाई, वो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल, आज भारत उनके योगदान को सम्मान पूर्वक स्मरण करता है। उनके जन्मदिन यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन केवल एक महान व्यक्ति को याद करने का अवसर नहीं बल्कि उन मूल्यों को अपनाने का भी है जो हमें अवसर देते हैं कि हम जीवन को अपने जीवन को समर्पित कर सके स्वाभिमान, एकता, शिक्षा, नेतृत्व और प्रकृति के सम्मान के प्रति।
1: और अंत में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर एक युवा अपने दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति समर्पण के बल पर इतिहास में अमर हो सकता है, तो हम अपने जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं?

0: शक भी होगा, पर डरना नहीं है क्योंकि हर ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। और करियर की बात करें तो करियर सिर्फ एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है आपकी हर रोज़ की डिसिप्लिन से, प्रैक्टिस से और छोटे छोटे पर सही डिसीजन से। आज लिया गया एक सही डिसीजन कल आपके करियर को एक नया मोड़ देगा। तो आज जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपको कुछ वैकेंसीज के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO AR O CA रिक्रूटमेंट 2026, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 21 जून 2026, जिसमें मिनिमम एज है 18 से 21 ईयर्स।
1: और सेकंड है SSC CGL रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। इसमें मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स, और इस वैकेंसी की लास्ट डेट है 22 जून 2026। और तीसरी इसी कड़ी में है RRB ALP रिक्रूटमेंट 2026 की भी वैकेंसी आ चुकी है, और दोस्तों इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 14 जून, और इसमें मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स।
0: और लास्ट यानी फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2026, जिसका ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जा रहा है और इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2026। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, आप इनकी वैकेंसीज़ के बारे में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज़ के लिए तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा, सिलेबस देखिएगा और मेहनत कीजिएगा, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
1: अब आप भी सोच रहे होंगे कि उन्नति और सीजल कितना बोलती रहती है। नहीं
0: बिल्कुल
1: तो क्यों ना अब एक गाना और सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इसका उत्तर हम अपने प्रोग्राम में नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं। तो दोस्तों, कल यानी दिनांक 8 जून 2026 का प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? और इसका उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
1: इसी के साथ हमारा आज का सवाल यानी 9 जून का सवाल है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सवाल एक बार फिर से सुने, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? आप अपना जवाब हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं जो कि है yuvvanialdi@gmail.com और हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8004926250 पर।
0: और वैसे दोस्तों, इन दिनों मौसम भी तो लगातार बदल रहा है, क्यों नदी?
1: बिल्कुल,
0: कहीं तेज धूप है तो कभी बारिश, और ऐसे में हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सेजल, तुम आज का ही देख लो कि आज कितनी ज्यादा गर्मी है और कंपैरेटिवली कल इसके हिसाब से तो ठीक ही था।
0: और खासकर हम युवाओं के लिए नहीं, मतलब अक्सर हम पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने शरीर का ध्यान ही रखना भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, ये तो है।
0: और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दिन भर में पर्याप्त पानी पीना चाहिए कि हमारी बॉडी हाइड्रेट ना फील करे, और घर से निकलते वक्त हमें अगर धूप है तो उसका बचाव करके निकलना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इस सीजन में जंक फूड हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
0: और जो मौसमी फल है उसको हमें ज्यादा खाना चाहिए,
1: जैसे तरबूज हो गया, मौसम्बी हो गया,
0: लीची हो गई।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखें, इस गर्मी से बच करके रहें, क्योंकि कभी कभी गर्मी हो जा रही है बहुत ज्यादा, कभी कभी बारिश पड़ जा रही है, तो कभी कभी एकदम आंधी आ जा रही है, तो ऐसे में पढ़ाई पर भी आपके मतलब
0: बहुत
1: असर पड़ने लगता
0: है
1: अगर आप बीमार पड़ गए तो।
0: हाँ, और एक दिन का लॉस मतलब कितना बड़ा हो जाता है कि अगर हम वही रेगुलर डिसिप्लिन से चलते हैं कि हमने टाइम टेबल के साथ चल रहे हैं कि हमें ये करना है, और एक दिन जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो फिर वो कई दिन तक चल जाता है।
1: बिल्कुल, और वो फिर पाइल अप होता जाता है,
0: और फिर एक दिन में कोई चीज तो ठीक भी नहीं होती है, तो इससे बेटर है ना कि जो चीज हो उससे पहले ही हम उसका भाई उसको हम बचा
1: सकें। तो दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम के अब अंतिम मोड़ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं एक और आखिरी गीत।

0: दोस्तों, ये था हमारा आज का युवाणी कार्यक्रम। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अपने फीडबैक्स और अपने सजेशंस हमें दें हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर। आप अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई करें और कंसिस्टेंट रहें। और तब तक के लिए हम आपसे कल फिर मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मुझे यानी उन्नति
1: और मुझे यानी सेजल को
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दाम्बोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अरविंद कुमार सिंह से लोकगीत और इंदु शेखर त्रिपाठी से रामायण पाठ। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोफेसर देवदत्त सरोरे की वार्ता होगी संस्कृत साहित्य राष्ट्रीय भावना। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनोज कुमार गुप्ता। 8:30 पर सबरस। 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। 10:00 खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बहादुर खां का सरोद वादन सुनिएगा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत 6:35 पर डॉक्टर हरीश चंद्र से की गई बातचीत सुनिएगा। विषय होगा खरीफ कालीन दलहनी फसलों की बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अमित सिंह की वार्ता होगी, लू लगने का आयुर्वेदिक उपचार। 7 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। दिन में 12:15 पर पंडित अनुपम राय का तबला वादन। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर कलाकार होंगे एस के घोष।

कल 10:05 पर सुनिएगा वॉइस ऑफ प्रयागराज, 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, 12:30 पर हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा, कलाकार होंगे रामजतन प्रजापति, प्रियंका चौहान और विष्णु राजा। शाम 5:15 युववाणी, 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मुशर्रफ अली और साथियों से लोकगीत और रजनीकांत चौबे से नीति वचन। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात 8:30 पर सबरस, 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देश गान।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: पंचो राम राम।
1: बद्री भैया।
0: हाँ घनश्याम भैया।
1: भैया हो देखा जोन खेती का इस समय तौर तरीका चलत हो ना।
0: हाँ हाँ
1: भैया देखा हो एक जमाना रहल हो बरधा रहें बैल रहें उसे भैया हर लेके खेते में जोताए।
0: बिल्कुल।
1: दिन बीत जाए बीघा डेढ़ बीघा का जोताई हो पा। धीरे धीरे हो बद्री देखा तमाम वैज्ञानिक भैयन का प्रयास भैल

0: अब भैया कृषि यंत्र आएगी, भैया हो कृषि यंत्र आवे से देखा कई तरह का फायदा भी भेल।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भैया जैसे समय के बचत होगा, श्रम कम लगल, खेती के थोड़ा आनंद भी बढ़ गया।
1: सही कहा था है। हम कहा घनश्याम भैया देखे हैं कि जोन ही मशीन के युग आए ना भैया, अब एहमा जोन आज का समय है देखे ही तो मशीनीकरण का दौर आ, यानी यंत्रीकरण का ऐसा दौर भैया आ गया कि अब तो किसान भाई ड्रोन उड़ावत हैं, और ड्रोन से भैया जोन पहले कीटनाशक वगैरह
0: हाँ,
1: छिड़काव
0: दवाई
1: करते
0: छिड़का
1: हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आजकल करते हैं, और सरकार भैया इतनी बढ़िया योजना ले आया है कि ड्रोन दीदी नाम से और ड्रोन प्रशिक्षण नाम से कोर्सों
0: हाँ
1: करावती है
0: बिल्कुल
1: सरकार,
0: बिल्कुल
1: कि जौन भी यंत्र अगर आप खरीदत आ तो उनकर परिचालन आप स्वयं कह सका।
0: स्वयं करा हो देखा ओकर जानकारी आई तो नीक बात हो बद्री। हम कहीं भैया कहल जाते न कि भैया बिच्छी का मंत्र न जाने कीड़ा के बिली में हाथ डाल
1: हाँ
0: दे,
1: डाल दे।
0: तो भैया कौनो रोजी रोजगार हो कौनो यंत्र हो अगर ओकर समुचित जानकारी हो ना, तो केहू के मुँह ना देखे के भैया केहू के बाट नहीं जो है के तनी सा तल बेतल भल अपने अनुसार उके दुरुस्त करके खेते में।
1: और भैया दूसर चीज़ ये ड्रोन भैया अगर आप मान लें अगर प्रशिक्षण ले लेता है तो ना सिर्फ आप बढ़िया उन्नत खेती करते हैं बल्कि आपके पास रोजगार का एक विकल्प आई
0: दो
1: हुआ।
0: पैसा का अलग से आमदनी भी हुई। हम कहीं भैया हो प्रशिक्षण लेके ओकर गुण सहुर सीख लेत बटा,
1: हाँ
0: तो भैया हम कहीं दू जाने चार जने तोके पूछी हैं, तो भैया आपन तो कुल दुरुस्त करता हुआ दूसरों को कह दे दो पैसा उसे भी तोके मिली।
1: सही बात है। अघनश्याम भैया एक उदाहरण हम देवे पानी का कि देखें पहले हमका लोग अपने बचपने की याद है, नहर में पानी आवे और जाई नारी घार बनाई काटी और खेते में घार खोल दिन पानी भरता है
0: हाँ
1: भरता
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: एक एक दो दिन दिन पानी चला जाता है, कहीं गर्मी का महीना है तो एक कहती भरता है तब तक दूसरे का दिन
0: सुखा
1: सूखता है।
0: जाता है बिल्कुल
1: लेकिन भैया
0: बिल्कुल
1: देखें आजकल ही कृषि यंत्रीकरण के तहत अटे कि ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का हम लोग बहुत अच्छे सब जाने समझे जाते हैं।
0: भैया टपक सिंचाई बा हो बदरी फुहारा वाली देखा सिंचाई बा। अब तो ऐसा मशीन आ लो डांडे लगाए दा भैया जौन प्रेशर से पानी भा छिड़कत बा ना जैसे लगा बरसात होत बा।
1: सही बात। अब भैया पानी हुए जाए का है जहां पे
0: जरूरत
1: आवश्यकता, यानी जड़न
0: बिल्कुल
1: के पास तो है पानी पहुंच
0: हाँ
1: जाता
0: हाँ
1: ही नहीं,
0: हाँ
1: भरत पानी चला जाता है बर्बाद हो चला जाता है।
0: ये हो झगड़ा हो जाए
1: हाँ
0: है
1: सही है।
0: भैया तोरे खेत दूर बा लम्हर बा पानी जात बा बा नारी से बह के दूसर के खेत बोर देत बा
1: सही बात है।
0: है, तो भैया उमन झगड़ा भी हो जाए उनका नुकसान हो जाए।
1: सही है।
0: ये देखा समय आ गेल हो कि भैया पाइप के माध्यम से जौन कहत हुआ टपक सिंचाई बाय फुहारा बाय भैया पानी के देखा बचत भी हो तो बदरी, अब भैया देखा पानी का सही उपयोग हो तो।
1: सही बात है भैया। और कृषि यंत्रीकरण भैया एक और देखें हम उदाहरण दे चाहब कि देखें वैसे तो हम हमारे खुद का माने कि भैया कि जोन बैल से हम लोग जुताई करते रहे ओकर कोनो तो विकल्प नहीं आए,
0: नहीं नहीं भैया खेती का मुआवजा लग रहा
1: मौज अलग
0: हाँ
1: रही,
0: बिल्कुल
1: लेकिन जब धीरे धीरे ट्रैक्टर आए तो हम लोग कल्टीवेटर से खेत जोतब शुरू करें, वह 10 मिनट 15 मिनट में 1 बीघा
0: हो
1: जुताई
0: जाए।
1: हुआ।
0: हाँ हाँ
1: लेकिन भैया आप देखें कि अब जब जब से रोटावेटर आए तो जोन हम काम अपने कल्टीवेटर से 3 बार ओकर जुताई करी और 1 बार हेंगा मारी
0: हाँ भैया ऐसे तो देखा एक के बार में फरिया जाता
1: फरिया
0: है।
1: जाता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल
1: अब एक तनिक के नुकसानों जो है भैया देखें कि हम जोन ऊपर वाली परत में बहुत सारे आप अच्छे वाले जीवाणु रहते रहें केचुआ
0: हाँ,
1: रहते हैं
0: बिल्कुल
1: ओकर
0: बिल्कुल
1: नुकसान है, तो
0: नुकसान नुकसान
1: ओकर भरपाई करे बड़े हमका ये चाहिए भैया कि हम हर साल जैसे कि हम पंचायती में देखें कलहो चर्चा होत रही कि भैया केचुआ वाली खाद जरूर तैयार करें।
0: बर्मी कंपोस्ट भैया देखा आपके अपने माटी के जान हो। भैया रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम केचुआ वाला भैया करा आ देखा हरी खाद का प्रयोग करा माटी के गुणवत्ता भैया पहले जैसा अब वापस करे के जरूरत हो।
1: और भैया ये बड़ा मुश्किल कोनो काम नहीं है, प्रकृति जौन चीज भैया देहेबा जौन चीज ले लेता ओका संतुलन करे जाना ही था, बस केवल हमका अपनी ओर से प्रयास करे का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल आ एक बात बद्री भैया ना
1: हाँ
0: मन में देखा और लहकत बा कहे के कि भैया हो देखा यंत्रीकरण के जौन बात करत है ना किसान भैया भैया एक एक रुपया दो दो रुपया जोड़ के इकट्ठा करत हैं, सरकार थोड़ा मदद करत है।

0: किसान भैया भैया एक एक रुपया दो दो रुपया जोड़ के इकट्ठा करत हैं, सरकार थोड़ा मदद करत हो तो भैया कृषि यंत्र आ जाता।
1: सही बात है।
0: शौख के मारे भैया लेते ले है, लेकिन होकर रख रखाव पर भी उतना ध्यान देब जरूरी है। काहे से देखा, अगर तोरे किसी यंत्र में कोनो भैया दिक्कत हुई, कोनो परेशानी हुई, तो आर्थिक नुकसान तो होबे करी, उसे खतरा भी हुई।
1: सही बात है भैया।
0: तो भैया हो जौन यंत्र हो देखा, ओके कायदे से साफ सफाई के साथ रखा। काहे से देखा, अगर कृषि यंत्र हो तो उसे खेती किसानी का मौज रही हो, जब यंत्र दुरुस्त रही सही रही।
1: वो बिल्कुल भैया, अगर कोनो चीज़ में खराबी आ जाती है तो पहले तो आपका ही नुकसान है कि आप अपन समय पे खेती न कर पूरा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दूसरा नुकसान यह है कि आपको जो समय कीमती समय हो तो खेती वाला, वो खेते में देख बजाय आप दुकान दौड़ी और मिस्त्री खियाँ दौड़त रह जाओ।
0: हाँ
1: और तीसरा, जितना बचाए के पैसा रखे रहा, कमाए धमाए के कुछ बचाए रहा, वो सारा पैसा ले जाबा वही ओकरे में दे देवे।
0: हम कहीं भाई ना कहे ना कुछ लोग के भैया जो सोच बा हो कि तनी सा खराब बात तो काम निकल तो निकल दे।
1: हाँ
0: देखा जैसे शरीर के तनी सा बेरामी लग जाले ना बदरी भैया, तो धीरे धीरे शरीर के
1: पूरा
0: कमजोर के।
1: शरीर।
0: हाँ तो वैसे भैया अगर हम कहीं नटो बोल्ट खराब हो जाए तो ये मत सोचा ये छोट खराबी हो।
1: सही बात
0: ओके
1: है।
0: तुरंत भैया ओके दुरुस्त करा ला। अब तो भैया फोन हो गया, मिस्त्री का नंबर रखा। हम कहीं ऐसा ऐसा नंबर तो अपने डायरी अपने कागज में रहेंगे चाहिए, जेकर जरूरत पड़त पाए भैया वो आके तोहर बनाए दिए। बर बाजार जाते ले ले जाए, जाके दिखा दा ओके। हाँ अब भैया देखा अभी बारिश का समय जो उनके धाने वाला आई ना, तो भैया देखा यंत्र का पहले से ओकर जाँच पड़ताल कहके दुरुस्त कैला।
1: भैया आप सही कहा। देखा कि सबसे बड़ा समस्या यह हो भैया, जिसे हम लोग अब खेते में उतरबे धान का नर्सरी तैयार करे पड़े। अब वो खेते के एक बार तो सूखे पानी में जोताई कर ले है, लेकिन ओकरे बाद जब पानी भरा रही और ओकरे बीचे में लेके अपन ट्रैक्टर घुसा हा, अगर कौनो खराबी आए और अगर खेते के अंदर ट्रैक्टर खड़ा हो गवा, तो समझा भैया कि नाश है यहाँ।
0: बिल्कुल आफत हो जाए तो बा कि उसे खेती तो अपन देर सवेर हो तो ओके खेती से निकाल के बहरे लिया में भी 10 जने के जुटावे के पड़ी, तमाम तौर तरीका अपनाओ के पड़ी।
1: सही
0: तो
1: बात
0: हम
1: है।
0: कहीं काहे इंतजार करे बदरी भैया, हम कहीं ओके चाहिए दुरुस्त कर लें, भाई से चेक वेक कर लें, ग्रीस तेल जवन है भैया सब दुरुस्त करके ललकार के रखे के चाहिए हो।
1: भैया हम एकदम सहमत है। देखा हमारे लोग को बचपना में देखे कि जब पहलवानी करे जाया कर है भैया अखाड़ा में सवेरे सवेरे, और संझाऊ के तो मान ले जात रहे, तो सवेरे एकदम तेल वो लगाए के बढ़िया दिने में अपने आप को फिट कर लीन
0: हाँ
1: जात रहा कि यार
0: बिल्कुल
1: लड़ाई कहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया तैयारी जैसे अपन करत है। हमके कि बचपन में देखा मेला देखे के हो तो काजर उजर लगा के बिहने से कूदे लगन
1: सही
0: जाए,
1: बात है,
0: तो
1: सही
0: वो एक
1: बात है।
0: जुनून होला है ना, एक शौक हो तैयारी के। तो भैया हो खेती किसानी कोनो भी तरह का हो, रोजी रोजगार हो, वो एकाएक नहीं कैल जाता। अभी नहीं कि भैया जब जरूरत आएगी तब ओके तैयारी करत हो।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: भैया दुरुस्त रखा और यंत्रीकरण का भैया प्रयोग अधिक से अधिक करा खेती में, सजग होके करा, संभल के करा। कहीं से देखा एक से खेती का निश्चित रूप से मौज बढ़ल हो। और यंत्र भैया देखा कई तरह का, जरूरी ट्रैक्टर से नहीं पा
1: सही बात
0: है
1: है।
0: भैया। अब तो जोते वाला, बोए वाला, काटे वाला, हिंगावे वाला, हम तो कहीं कूले तो मशीन से होत बा।
1: अरे भैया अब ड्रिप इरिगेशन वाली जो एठू मशीन आए बा, मतलब वो तोहार बीज का इतना नाप जोख के अंदर रखा था
0: बिल्कुल
1: कि जिसमें
0: बिल्कुल
1: सबसे ज्यादा पौधा बड़ी तेजी के साथ बढ़ जाए ओमा स्थिति रहा था।
0: अब ज्यादा हमारे जो है बीज का भी देखा जरूरत नहीं पड़त था। अब और भैया ना तो बहुत घन हो पाई ना बहुत बिरल हो पाई।
1: सही। एक बात और घनश्याम भैया कि देखें यंत्रीकरण के इतनी देर से बात भय, अब बहुत सारे किसान भाई वैसे तो बहुत जानकार हैं, लेकिन जिनका ना पता हो भैया कि देखें सबसे जरूरी हो तो पंजीकरण। अगर आपका यंत्र भैया खरीदे का है तो सीधे बाजार न भागा, सीधे तू जा सहज जन सेवा केंद्र।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया
1: और एकरे अलावा आप अपने ब्लॉक जा सकत है, ब्लॉक के अलावा कृषि रक्षा इकाई जा सकत है, हुआ पे भैया आप अपन पंजीकरण बतौर किसान कराए ला। वहाँ का लागी भैया, आपका आधार कार्ड लागी, आपके खसरा नंबर एक ठू लागी, और गांव और एक ठू मोबाइल नंबर जिस पर कि संदेशा चला जाए।
0: जाए भाई संपर्क बनल रहे। नहीं देखा ये तो बहुत जरूरी बात बतौला हो कि भैया क्या पंजीकरण करा लें। और देखा उमन सरकार की तरफ से भी तमाम तरह का सहयोग है ना, तो भैया ऐसे पीछे न रहें
1: और
0: आप।
1: घनश्याम भैया जाना था है, एहमा अलग अलग प्रकार का सब्सिडी मिला था, जैसे कि आज के समय में आप खरीदे जा रोटावेटर तो मैं 60%

0: सब्सिडी आपको मिलेगा,
1: आधा से
0: ज्यादा मिलती है। और सिर्फ भैया यंत्रीकरण का आप छोड़ दे, घरे में आपको मान लग गेहूं चाउर कुछ रखे बरे आपका बक्सा कुछ चाहता है ड्रम चाहता है, तो आप अगर पंजीकरण कराया है तो ओकर लाभ भैया पौबे, और नहीं पंजीकरण कराया है तो बाजार से आपको महंगा बहुत खरीदे पड़ी।
1: बिल्कुल हो बिल्कुल, यंत्र का बात करा हो खाली मुँह में कवर नहीं डालत बा, भोजन पचावत नहीं बा, नहीं तो हर जगह हो। अब देखा हमारे पड़ोसी में भैया ना बढ़िया जौन है कि पशु पालन के व्यवस्था के लिए हुए, हम सोचत रहे हो बद्री भैया कि इतना गाय भैंस बाहे का दूध कैसे निकली।
0: हाँ।
1: हे हो भैया मशीन ले आए दी।
0: अच्छा। हाँ।
1: अब भैया लगा देत बाइन हो बढ़िया दूध निकाल देत बाइन मशीन। अब सोचा कहाँ समस्या बा,
0: सही बात है। वह काम अगर 10 भैंस रहा तो मनाई पूरा दोपहर भर लाग जात केवल दूहे दूहे दूहे में,
1: पकुरा फाटे लगा। हाँ। बिल्कुल।
0: लेकिन अच्छा ए भैया यहो देखी थी कि देखा पहले हमका लोग अपने बचपने में याद है खेते में चला जाई चरी काटे चरी लात कले के मुड़े पे लात कले क्या एक घंटा जाए में एक घंटा आवे में फिर हाथे सोका बाला में एक घंटा लगे।
1: बिल्कुल हाँ पत परात भैया आवे मने अतनी से चरी कड़ा हो जाए तो भैया खींचे में करे जा दुखा
0: जाए।
1: हाँ
0: बिल्कुल। और आजकल यंत्रीकरण का लाभ देखा भैया मशीन चलाए दे
1: तरह का
0: मोटर चलाए दे
1: तरह तरह का। हाँ
0: और आजकल तो देखी तो भैया दुआरे दुआरे एकवा वाला थ्रेसर टाइप का रहा था अल्लाह के लगाए दहे नौका और बढ़िया जितना बाल के रखे बहन चाहे सूखा चारा बाल के रख ले चाहे ताजा चारा
1: खूब
0: बाल के
1: भैया खूब भैया अरे घंटा दो घंटा में भैया घर भर देते।
0: हाँ
1: हाँ
0: और यह अच्छा भैया एक तरह से थ्रेसर एक काम करता है लेकिन यह है कि किसान भाइयन यंत्रीकरण से लाभ बहुत पावता है।
1: भैया हो बहुत सहज बहुत सरल हो गया। अब भैया खेती किसानी समझ ला कि वो परेशानी वाली चीज नहीं बा।
0: सही बात है। अच्छा घनश्याम भैया एक चीज और हम कहा कि देखिए जैसे आप भाई तनिक देर पहले कहा कि अब ही जब आपके पास जो यंत्र है ओकर ग्रीस ओकर तेल ओकर पोंछ चाहे कि दे हम एक चीज ही मोर जोड़े चाहत रहे भैया कि आपके पास चाहे जो यंत्र हो जैसे आप अपने खेती के बारे में खेती किसानी के बारे में सारी चीज जाना था वैसे न अपने यंत्र के बारे में जानकारी जरूर रखा।
1: बिल्कुल बिना ट्रेनिंग के भैया अब बिना जानकारी के ना कौनो ऐसा भैया काम न करें जौन जौन की आगे चल के उनके बदे परेशानी बने। भैया हाँ देखा शौक के मारे हो घरे में ट्रैक्टर आ गया ना गदेला शौक के मारे लेके चढ़ गई ना दो फेरा घुमाना फिर सड़क पे लेके निकल गई ना
0: सही बात
1: अब
0: है।
1: लड़ाई भिड़ा के लेके चलिए ना। तो भैया हो ओकर देखा पूरी जानकारी पूरी तरह से जब दुरुस्त हो जाए तब भैया कृषि यंत्र हो चाहे कौनो भी तरह के यंत्र हो ओकरे साथ छेड़छाड़ करें।
0: और कृषि यंत्र अगर भैया देखा है इस समय आएगे हो आपके पास भैया तो होवे करी तो ये बहुत बढ़िया मौसम बा भैया इस समय खेती की जुताई करेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया जुताई का एकदम कर और के सब दुरुस्त हो। हाँ बिल्कुल अब आगे के तैयारी में मन पूरी तरह जोर से लगल पाए।
0: सही बात है।
1: तो भैया हो देखा निश्चित रूप से किसान भाई हमारे तरह की बात बत कही के सुनना और भैया उसे सहमत भी भई ना। हाँ भैया आगे जो ना बात बत कही हमने का तो होता रही
0: हाँ
1: लेकिन थोड़ा सा किसान भैया लोग सुनने वाले भैया के संदेश पर
0: हाँ
1: एक सुनवा दो।
0: ठीक भैया।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत नया आकाशवाणी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ भैया
1: देखा सनेश हो गया देखत भाई आज कार्यक्रम का गठरी तोहार बरियार बताए दे भैया किसान भैया के कि आज का सुनवाओ वाला बाटा।
0: देखा भैया आज तो सबसे पहले एक अरविंद कुमार सिंह भैया का विकास गीत बा।
1: वाह भैया
0: आज कार्यक्रम का जब हमारे लोग को पंचायत चरम की ओर बढ़ी तो सबसे पहले एका सुना जायी। एक अलावा भैया देखा आज का विशेष दिन हमेशा से मंगलवार हम लोग रामायण पाठ किया था।

0: बिल्कुल
1: आज इंदु शेखर त्रिपाठी भैया बहुत बढ़िया लेके आए हैं। अब वहीं जब सुनी है तो मन एकदम हरियर हो जाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: भैया,
1: एकरे अलावा भैया पंचायती के कहते नहीं कि जब हम लोग घरे चले वाला हो तो एक बार ढोल मजीरा फिर बाजा था।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: आज
0: यानी हाँ
1: हाँ तो
0: हाँ
1: गर्मी देखें भैया चलते यहाँ, तो ये आज एक दादरा है भैया राजेश कुमार गुप्ता भैया का, उन्हों अपन ढोल मजीरा लेके आए हैं, तो सबके
0: बिल्कुल
1: साथ है
0: बिल्कुल
1: बैठा जाइए
0: बिल्कुल
1: आज।
0: भैया हो, आज तक कार्यक्रम बिल्कुल मनोरंजन से भरल बा। देखा अपन कार्यक्रम ज्ञान मनोरंजन
1: हाँ
0: से भैया पूरा भरल रहेला। तो भैया हम तो कहें कि पहले अरविंद कुमार भैया का ना जो विकास गीत बा वही सुनल जाए।
1: हाँ भैया बिल्कुल
0: सुनावा भैया।
1: सुनो।

0: भैया, बद्री भैया देखा, देश सेवा खाली सीमा पे जाके लड़े से ही ना हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे बात देखा हमार तो आर होत रहा हो कि प्राकृतिक संपदा जौन बा अगर हम ओके बचा के रखत ही बिगड़े ना देते, यो देश सेवा हो।
1: बिल्कुल है भैया,
0: प्रेम परस्पर से रहत ही भैया, क्यों दुखी बा तकलीफ में बा ओकर सेवा सभाकन कह देवल जाए, यो देश सेवा।
1: बिल्कुल भैया,
0: आज जमाना बदल गया हो बद्री भैया की, ब्याह शादी में देखा का कह कपड़ा वाला टेंट आ जात बा, कुर्सी मेज आ जात बा, भैया खाना खियाओ वाले जौन है कि वो किराए पे आ जात है। वो जमाना याद करा हो कि जब लड़कपन में पंगत बैठे पतरी पर लोग खाए, अब भैया हो हजार हजार लोग खाए लेकिन जेकर यहाँ परोजन रहे वो टार्च जला जला सबकर मुंह देखे और ओके याद रहे के आयल हो क्यों ना
1: यार। सही कहन भैया, हमका तू दिन याद आए कि जेकरे खियाँ कुछ पड़ जाए तो लड़िकन का काम रहा है कि गांव तीन तीन चार चार गांव दूर केकरे खियाँ कराहा बा, केकरे खियाँ ड्रम बा। अब गांव उनके घरे को मनाई कौनो भले ना जाए, पड़ोसी का पड़ोसी के पड़ोसी का
0: सौख रहे हो, सौख रहे खुद आए के लोग पूछे ना हलवाई लगा हाँ। हो ना किराए का हमने गाँव के आदमी बनावे। ये इतना देखा कि बारात जौन है दो दो तीन तीन दिन टिके,
1: हाँ सही बात है,
0: नाच तमाशा होए भैया बढ़ार रहे, तो हम कहें वो प्रेम परस्पर से अगर आज भी जीवन जियल जाने तो यो देश सेवा।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल
0: भैया, मांग मांग के हो जेकरे कुछ ना रहे, मांग मांग के लड़की का शादी हो जाए, जैसे बुझाए कि गांव का लड़की बा,
1: गांव की लड़की है भैया। भैया का नहीं आवत रहा, पड़ोसी पूरे गांव भरे से बिस्तर मांग किया हुआ है, पूरे गांव भरे से खटिया माचा और तख्ता मांग किया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो,
1: वो कहन हम 10 किलो भैया चाउर दे भाई, वो कहन हम 50 किलो आटा दे थाई, हमरे क्या सरसों ज्यादा पैदा भाई, हमें का दे थाई।
0: मेहमान आवे मुड़े पर दही का ठेला लेके भैया पहुंच जाए, जग जग रहे।
1: सही बात है
0: भैया, आज जौन हम तू तो वो दौर देख लियो, हम तो यो दौर देखत बाटी।
1: सही है
0: कि भैया घरे में लोग आपस में बात बात कही नहीं करत बाटन, इतना उनकर जीवन का कहल जाओ के अंग्रेजी में फास्ट हो गया,
1: फास्ट हो गया।
0: कि भैया हो अरे हम कहीं जौन सब कुछ ठीक हो, काम धंधा भी होए के चाहिए, खेती किसानी भी होए के चाहिए, लेकिन दुखा सुखा भी होए के चाहिए।
1: बिल्कुल होए के चाहिए भैया, और अगर भैया दुखा सुखा नहीं होता है तो समझा कि मशीन में और तुम्हें का फिर अंतर रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मशीन दूसरे मशीन से नहीं पूछत कि भैया तू खराब हो गया कि अच्छा चला था, वैसे अगर मनायू एक दूसरे से ना पूछे कि भैया का हाल चाल बाप, जैसे हम ही ना आप पंचायत भवन में आके बैठी थी पंचायती में और बोले के बजाय आपस दूसरे में ऐसे गुम सुम बैठा रही,
0: बिल्कुल
1: का मतलब निकला भैया इंसान है। जैसे खेती किसानी में भैया जा दे खेते, तो जब तक खेते का माटी हमारे मूढ़े पर ना लागे और हमारा पसीना नीचे खेते में न जाए तब तक काहे का किसान।
0: ये हो अब तक देखे में यो आवत बा न कि तोहरे खेते में अगर जड़ जानवर आ गई ने तो ओके भैया लमहर ना भगई है,
1: सही बात है भाई,
0: पड़ोसी के खेते में कही।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात कहन भैया।
0: तो भैया ये विचार के अगर ये समाज रही तब तकलीफ हो।
1: सही बात है, मनाई भैया देखी कि दूसरे खेते में पहले का हाँ किया हुआ है, तब आए के बतावा कि ए भैया राम अवतार तोहरे खेते में पड़ा रहा हाँ किया है, अब फिर पता लगा कि राम अवतार उनके खेते में पड़ा रहा है, तो
0: यह होए के चाहिए भैया, यह होए के चाहिए। अब भैया अगर देखा ना एक दूसरे के प्रति अगर ध्यान रही तो अपन गाँव अपन समाज अपन देश भैया दिन रात उन्नत करे।
1: सही बात है,
0: तो ये तरह के चीज देखा भैया ना, ये सब बात हो तो ये सब बात कहाँ मिली, अब तक कहे सुने वाली भैया न कहे वाला क्यों रह गेल बाय न सुने वाला क्यों रह गेल बाय,
1: सही बात
0: है, कहाँ चाहत बाय तो गदेला डांट के चुप करा दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया,
0: तो भैया हो आप जौन आपन देखा

0: रामायण हो,
1: हम्म,
0: आपन जौन गीता हो, है ना, और भी जौन धर्म का चीजें हैं, नुमन ये सब चीज लिखल हो।
1: हाँ
0: भैया अच्छी अच्छी बात हो, हम कहीं की देखा वही सब देख के, वही सब सुन के, वही सब पढ़ के जीवन जिए का सलीका
1: बिल्कुल
0: आवेला।
1: भैया बिल्कुल।
0: तो भैया देखा आज मंगलवार जैसा कहते रहला है, तो आज देखा रामायण पाठ का दिन बा, तो आवा हो इंदु शेखर त्रिपाठी भैया से कुछ सीखल जाए।
1: बिल्कुल भैया
0: हाँ
1: सुनाओ।
0: सुना।
2: रामायण में मित्र की महिमा अभूतपूर्व गाई गई है। भगवान श्री राम के प्रथम मित्र निषाद राज मिलते ही अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। देव धरने

हमारा धन घर परिवार धरती राज्य सब मित्र आपका है। कितना सुंदर समर्पण है। और जब अपने आवास में चलने की सलाह देते हैं तो भगवान अपने मन की पीड़ा सखा से बतलाते हैं। भगवान का मन भर गया, करुणा में डूब गए और कहते हैं, कहे हो सत्य सब सखा सुजाना, पिता दीन मोहियाय सुवाना, वरिष चार दस बास बन मुनि व्रत बेसहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी गुहि भयो दुख भार। अत्यंत दुखी हृदय से निषाद राज भगवान से बोले,

कई नंदन मंद मति कुटिल कठिन पन केन, जय रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख देना। मित्र के दुख को सहन न कर सकने निषाद राज जी और अयोध्या के सभ्यता पर प्रहार कर बैठे। कैकेयी को निशाना बना लिया। भगवान के दूसरे मित्र सुग्रीव की कथा सुनने के लिए जो अनुपम कथा है, बेमिसाल मित्रता की यह कहानी। वन में जब सुग्रीव से मित्रता हो जाती है तो सारी कहानी सुनने के बाद सीताहरण की, उन्होंने अपने आप भगवान राम से दैन भाव में कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, ताजहु सोच मनया नहु धीरा, सब प्रकार करि हो सेवकाई, जेहि विधि मिलि जानकी आई। भगवान श्री राम प्रभु प्रसन्न हो गए और स्वयं मित्र की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए आतुर हो गए। करुणा निधान करुणा सागर में डूब गए और बोलते हैं, बताओ सखा, वन में तुम्हारे भटकने का क्या उद्देश्य है? सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीव, कारण कौन बसहु बना मोहि कहो सुग्रीव। सुग्रीव ने सारा वृत्तांत अपने और बाल के प्रति सब सुना दिया। मित्र की पीड़ा न सक सके प्रभु और मित्र के प्रति इतने उदार हो गए और स्वयं अपने मन के भाव को प्रकट करके बोलते हैं,

धूल के समान हो फिर भी पहाड़ के बराबर मानना चाहिए। गुण प्रगट ही आए गुण ही दुराबा। मित्र के दुख को, मित्र के अवगुण को छिपाना चाहिए और गुण को प्रकट करना चाहिए। कौपथ निवार सुपंथ चलावा, लेत दे तो मन शंकन धरही, बलय अनुमान सदाहित करही। सदैव मित्र के प्रति उदार रहना चाहिए। वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन हो तो उसके प्रति सदैव निर्माण की भावना, त्याग की भावना रखनी चाहिए। जाकर चित आहि गति सम भाई, आशक मित्र परिहरेउ भलाई। सेवक सठ कृप निर्भिन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। जिस मित्र की मति सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे मित्र का त्याग कर देना ही उचित होता है और उसी में भलाई भी होती है। सेवक यदि क्रूर हुआ, आज्ञाकारी न हुआ, राजा यदि कृपण हुआ और धर्मपत्नी यदि अनुगामनी न हुई और मित्र कपटी हुआ, तो ये चार के चारों कांटे के समान हृदय में चुभते हैं। इनका परित्याग कर देना ही अत्यंत उचित माना गया है और भगवान अपने मित्र सुग्रीव के प्रति पुनः बोलते हैं, एकदम भुजा उठा के, सखा शोक त्याग हो बल मोरे, असब विधि घटब काज मैं तोरे। हे सखा सुग्रीव, अब तुम मेरे बल पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे समस्त कार्य स्वयं निपटा दूंगा और उसके लिए अब चिंता मत करना। याद रखना, भगवान के तीसरे मित्र जब विभीषण जी लंका को छोड़कर, अपने भाई रावण को छोड़कर भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान कितने प्रेम के साथ सुग्रीव को अपनाते हैं। आगे जैसे ही विभीषण जी महाराज शिविर के समक्ष खड़े होकर देखते हैं और भगवान के बगल में बैठे हुए सुग्रीव जी भगवान से बोल बैठते हैं, देखिए लंका के तरफ से कोई आया है। भगवान कहते हैं कि जाकर देखो सखा, फिर भी बैठे ही बैठे वो बोल देते हैं, वेद हमार लेन सठयावा, राखी बांध मोहे यस भावा। सुग्रीव जी ने बांधने का आदेश देते हैं, भगवान मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराने के बाद कहते हैं, ठीक है, आपके सलाह को, आपके परामर्श को मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा एक नियम है, मेरे शरण में जो आता है वो कैसा भी हो मैं अपने प्राण के समान उसे रखता हूँ।

जय दुख गिरि शम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु शमानो। मित्र के कष्ट से मित्र द्रवीभूत नहीं होता तो उस मित्र को देखने मात्र से ही बड़ा पातक लगता है। अपना दुख पहाड़ के समान हो तो धूल के समान मानना चाहिए, और मित्र का दुख

तुम्हारी। हे मित्र, तुमने बहुत सुंदर सलाह दी, लेकिन शरणागत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जाकर उसे ले आओ और जैसे हनुमान जी और अंगद जी जाकर मित्र को साथ में लेकर भगवान के समक्ष खड़ा कर देते हैं, भगवान कितनी उदारता के साथ अपनी कृपा दृष्टि मित्र पर रखकर अपने पास बैठाते हैं और बड़े प्रेम के साथ बोलते हैं, कहलंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडले बसे दिन राते सखा धर्म निभाए के भांति। भगवान प्रेम के साथ पूछते।

0: रावण के जीवित रहने के बाद ही भगवान विभीषण को लंकेश कहते हैं। अभी रावण जीवित है फिर भी लंकेश कहते हैं और कुशल पूछते हैं, बोलो राक्षसों के बीच में, खलों के बीच में तुम्हारा परिवार और तुम कैसे रहते होगे? और भगवान अपने सन्निकट बैठा कर वानरों से एक प्रस्ताव रखते हैं कि देखो अब मैं अपने मित्र का राज्याभिषेक करने जा रहा हूँ और तुम लोग इसमें सहयोग दो। ऐसे कहे राम तिलक कहते ही सारा सुमन ब्रेष्ठ नव भय पारा। हनुमान जी को समक्ष करके सामने खड़ा करके कहा अब यह तुम्हारा कार्य है, मैंने इन्हें लंकेश बना दिया। जामुन जी ने कहा महाराज अभी रावण जीवित है और आपने इनको लंकेश बना दिया। भगवान ने कहा यह जिम्मेदारी हमारे हनुमान जी के है क्योंकि हनुमान जी के आश्वासन पर आए हैं। का तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब ये लंकेश बने अथवा न बने हनुमान जी महाराज यह आपका कार्य है। और इतना कह के अपने मित्र को अपने पास बैठा लेते हैं। मित्र की महिमा बड़ी विचित्र रामायण में गाई गई है।
1: वाह भैया, देखा इंदु शेखर त्रिपाठी भैया मित्रता पे कितना बढ़िया जानकारी दे। हम कहे कि भैया देखा बातचीत तो करे मन बा, लेकिन उसी पहले सोचे थी ना एक बार अगर लोग गीत और बज जाते तो आनंद आ जाता।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
1: तो भैया राजेश कुमार गुप्ता का आवा एक दादरा बा आवाज सुना चाहिए।
2: बिल्कुल सुना।

0: भैया
1: भैया देखा चले के बेला होएगी, लेकिन उसे पहले हम कहा कि पंच भाइयन को वाला नंबरवा बता दे, जैसी वो लोग अपन बात हमसे कह सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो पंच भाई देखा जौनी बद्री भाई का मन बा ना कि
1: हाँ
0: भैया
1: हाँ
0: हम ही सब बोली ला आप लोग सुने ला।
1: हाँ
0: बहुत सारा ऐसा भी होत हुई कि आपो के मन में बात विचार बनत हुई कि आपो अपन करा,
1: सही
0: तो
1: बात है।
0: देखा हो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर बा, एक लिख ला 800-4926-2500, 800-4926-2500। तो ए पर भैया व्हाट्सएप करके अपन बात विचार हमारे तक पहुंचा सकत है, और आप कार्यक्रम में का चाहत है वही के अनुसार फिर हम लोग प्रयास भी करब कि आपकी इच्छा अनुसार कार्यक्रम में गुणवत्ता भी ले आए और
1: बिल्कुल
0: आप। हाँ
1: घनश्याम
0: बिल्कुल
1: भैया, एकरे अलावा फेसबुक पे हमारे आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से पेज बा।
0: हाँ देखा इहो निकबा हो तो ओ पेज के भी भैया देखा फॉलो पहले कैला ओके देखा, ऊपर भैया और भी आवे वाले कार्यक्रम के जानकारी रहत है तो आपके जानकारी भी हो जाए कि कब कौने समय कौन सा कार्यक्रम आपके रेडियो के माध्यम से
1: और
0: होगी।
1: घनश्याम भैया देखा मौसम बहुत तेज भैया बदलत बा, बदरी होती है, बार बार धूप होता है, एहमा खुदो को बचाए रहा, गोरू लड़का और जौन घरे में बुजुर्ग प्राणी हो सबको बचाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बद्री भैया देखा किसान भैयन से बात बतकई करे में ना मन नहीं भरत
1: हाँ
0: है।
1: समय को पता नहीं चला।
0: हाँ लेकिन सम देखा बाध्यता बा समय कभी तो समय इशारा करत बा कि भैया झोरा झंटी उठावा चली चला कीन जाए। तो अच्छा पंचो
1: क्यों राम
0: राम राम।
1: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर अल्प नारायण त्रिपाठी का काव्य पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मनोज कुमार गुप्ता। 8:30 सबरस, 9:30

मिनट पर सुनिएगा कहकशां, 10 बजे खेल दर्पण लखनऊ केंद्र से। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बहादुर खां का सरोद वादन सुनिएगा। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

भावना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा

0: दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास ही के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
1: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर अल्प नारायण त्रिपाठी का काव्य पाठ।
1: संस्कृतम रक्षणीयम प्रिय इति विषयम अवलंब्य एकाम गीतिम प्रस्तावमि। रक्षण

या च शुभ्रा सदा भ्राजते हृदि बुधे या च शुभ्रा सदा भ्राजते हृदि बुधे भारते संस्कृति भारते संस्कृतम् रक्षणीयं प्रिये स्वामृतं संस्कृतं व्याकृतं ज्योतिषं येन श्रुतिमर्जनम्।

रसाले विसाले नुते क्वास्ति नीलया, रसाले विसाले नुते क्वास्ति नीलया।

संस्कृत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अल्प नारायण त्रिपाठी का काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मनोज कुमार गुप्ता के स्वर में भजन।

मनोज कुमार गुप्ता के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आशा फिल्म से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया, आनंद बख्शी का लिखा, आशा भोसले की आवाज में, अब्दुल्ला फिल्म से।

श्रोताओं, अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में बंदिश फिल्म से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

आशा भोसले की आवाज़ में बेवफाई फिल्म का ये गाना आपने सुना। संगीत था बप्पी लहरी का, शब्द रचना हसन कमाल की। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में सागर फिल्म से। संगीत आर डी बर्मन का, शब्द रचना जावेद अख्तर की।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में कसम वर्दी की फिल्म से। संगीत है बप्पी लहरी का, शब्द रचना अनजान की।

श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कविता पौडवाल और साथियों की आवाज में भजन।

सब्र इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना भजन। इसी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जफर हुसैन खां और साथियों की आवाज में कव्वाली।

श्रोताओं, इसी कव्वाली के साथ कार्यक्रम सबरस यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम की एक रचना तो अभी बाकी ही रह गई, लीजिए सुनिए चित्रा सिंह की आवाज में।

चित्रा सिंह की आवाज में अभी आपने सुना गजल। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध

0: आने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा

0: भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र

0: कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings.

0: के मंदिर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर एट एवरी नेबरहुड. द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ऑल्सो प्रोवाइडिंग क्वालिटी एश्योर्ड जेनरिक मेडिसिन एट सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइसेज देन मार्केट प्राइसेज. टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, दिलीप कुमार, ए रेसिडेंट ऑफ बिहार, सेड दैट द मेडिसिन एट जन औषधि केंद्र आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस.
1: If the medicines were not from the Jan Aushadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100-rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too. And my money is not being wasted either.
0: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम. भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है. भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है. मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया. दफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी. अब खबरें तफसील से. भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है. भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है. नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली पाकिस्तान से आ रहे वीडियोज और फर्जी खबरों के पैटर्न पर निगाह रखे हुए है. जनाब जायसवाल ने इन्हें

0: चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और यह तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के कयाम को मंजूरी दे दी है। ये निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का अबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नज़र रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूआत पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनाकिद कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते

0: हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुँचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरिकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेश कदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफरीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निज़ाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कहकशा। हमारा ये प्रोग्राम आधारित होता है गज़लों पर। इस कार्यक्रम में सबसे पहली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में। संगीत है अनु मलिक का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, अगली गजल सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में, मौसम फिल्म से। संगीत है मदन मोहन का, शब्द रचना गुलजार की।

जगजीत सिंह की आवाज़ में सुनिए दुश्मन फिल्म की ये गज़ल। संगीत है उत्तम सिंह का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

पंकज उदास की आवाज में सुनिए ये गजल। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना आनंद बख्शी की, फिल्म का नाम नाम।

श्रोताओं, कहकशा कार्यक्रम की अगली और आखिरी गजल हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अदालत फिल्म से। संगीत है मदन मोहन का, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की।

श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में इस एक गज़ल के साथ कार्यक्रम कहकशा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में

0: काफ़ी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौर से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा, और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
1: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले। और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे, तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था, तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, उधर दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ की जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा, और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
1: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट चार विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, भी फॉरेस्ट टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले। लाइक प्राउड था कि हाँ कुछ तो, सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची, फिर सबके माहौल देखा, सब ने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
0: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली, तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी, उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा दी मेरे पास लिस्ट नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी, जब मैंने लिस्ट देखी तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया, सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे ही सुबह सबको पता चला कि क्रांति का सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहां पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने चार विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
0: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
1: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी। पहले तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे, और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी, तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं, तो मेरे को ना वो सेट सा लग के रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे, वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
0: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौर के कोच राजीव बिलथरे ने उनकी

0: खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से।
1: आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई।
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था। तो हम तीन चार लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें। तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ एक मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
2: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है। तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले।
1: जी
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अब ये लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
2: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साईं स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गाँव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
2: हाँ देखिए उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी आपने सहयोग किया।
2: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। फिर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ।
2: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है।
1: जी हाँ। उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
2: संघर्ष के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह,
2: तो हाँ तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
2: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड दो चीजें उसकी बहुत अलग है, हट के भी देखेंगे तो आपको अलग ही उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है।
1: मतलब एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति।
2: हाँ नहीं जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे पहुंची है।
2: जी जी जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
2: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
2: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब

0: मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौर जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30-11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला
0: हाँ
1: जी
0: थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी
1: जी
0: भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा
0: बधाई हो।
1: वह युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शेडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
1: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे?
2: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
1: जी
2: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
1: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
2: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
1: जी
2: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
1: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
2: बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेल।
1: जैसे हमारी सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
2: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
1: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
2: अच्छा, के साथ में ही जाते हैं।
1: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
2: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
1: जी,
2: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और

0: उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
1: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह
0: उनका
1: के
0: फाइनल जो
1: खिलाड़ी,
0: मैच था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
1: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है, कहीं ना कहीं खेल को प्रोत्साहन दे रही है। जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और
1: जी
0: शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था
0: जी जी
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और
1: चलिए
0: मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी।
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे एक
1: जी
0: प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
1: जी बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे
0: बिल्कुल,
1: जी
0: कहीं
1: जी
0: ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे,
1: जी
0: लगभग लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ,
1: जी
0: तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
1: जी
0: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
1: जी
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है। और
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग हैं और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं, और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया, इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए है, जिसमे की हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
1: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत।

0: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का,
1: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं, पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
0: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
1: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइल है। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा, कौन बच्चा बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
0: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
1: उसको बारीकी बताते हैं।
0: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
1: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है, और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी नहीं, सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
0: परेशानी हो जाएगी। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
2: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
3: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है, यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहां से। फिर
2: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
3: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली।
2: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
2: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग

0: कहीं और है।
1: जी
0: अगर आप उसको वो करवाओगे ना, तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
0: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैम्प में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोल नहीं सकते
1: चलिए,
0: कि
1: लेकिन
0: क्या होता आगे। हाँ, बाकी मैं
1: हमारी
0: लगी हूँ
1: मनोकामना है।
0: प्रैक्टिस
1: और
0: में।
1: इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और
0: जी
1: आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।
2: खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: खेल दर्पण।
4: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है सीमा घोष का राग कलावती में ख्याल गायन।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बहादुर खां का राग कौशिकी में सरोद वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बहादुर खां का राग कौशिकी में सरोद वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा ही हमारे जीवन में बदलाव लाता है।

शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, पर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं।

बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा के साथ साथ अच्छे विचार भी दें, ताकि भविष्य में बच्चे संस्कारवान व चरित्रवान होकर अपने कुल व देश का नाम रोशन कर सकें। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई